ए अमारो नाथ की अमारो कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

भजन करो हरे जगत जगतार, भजन करो हरे

करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत सारी सर से आ

0: शुभकर बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभकल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को मनाते मनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका को जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि हमने पहले शुभकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभकल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे बैरू भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना, और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको, या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, बैरोभौजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बैरू भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।

0: लालाजू आज तो बगल में रेडियो रखे और जो लेकिन का कर रहे हो तुम?
1: अरे भौजी कर तो तुम रही, तुम बताओ का कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
0: अरे लालाजू का जा रहे थे ना, मैंने की बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम का कर रहे?
1: अरे भौजी मोई ना सुनो, अब वो कितनिया के आधी अधूरी जानकारी ले लो तो कितम के नियत ना घर के ना घाट के।
0: का कह रहे लालाजू, आधी माधी कर लेते सो बही कर रहे, का कर रहे?
1: अरे भौजी ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गई कछु भी चीज की कछु भी काम की तो ना घर के रहे ना घाट के रहे।
0: तो बात का कह रहे लालाजू, घर को कुत्ता, घर को ना घाट को?
1: अरे बाकाना दूसरी हम जा दूसरी कह रहे कि अब जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
0: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो
1: हाउ, तो अब हमने

0: बात सुनी तो है ना जी, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: तुमने ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लालाजू।
0: अब बस भौजी तनक एक संग दूसरा काम करत जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे भी बड़ी बता तो इन नोनी तरह से रहती, लेकिन हाँ। हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लालाजू मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को मत सुनाई दे ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो बज्जे सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
0: अरे भौजी तुम केवे को मतलब का है, कुन में उतर के तुम मोड़िया ने देख रहे हो तो।
1: मैं तो जय कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बामे ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
0: अब भौजी नहीं सुन भाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बनाई ली।
1: हाँ ये राम भाई तुम्हें तो खूब आते है वो, अब बना लो।
0: अब भाई तो कर रहे है भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
0: अब जी सब सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लालाजू की मोई तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
0: अब का भौजी जब काम करे तो भड़ना जाए, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को देख भड़ गए जैसे बन जाए कब पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
0: अरे भौजी जब अपन पूरी तरह से जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करे तो अच्छी तरह से बने, हमने सुना कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छो हो जाते।
1: का कह रहे लालाजू, दूध में मिला मिला के पियो तो अच्छो हो जाते।
0: हाँ कोनो काम अगर अपन अच्छो घुल मिल के करे भाई रुचि से तो हमने की तना भिड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे है क्यूँ मैं भिड़ जाओ तो मैं एक तरह लिया मैं और मुँह पोत दू मैं तुम तुमने और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
0: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से तुम्हें बन जे?
1: कहा कह रहे लालाजू चाटा खल जे, मैं देखा तुम्हें ये देखो गयी तुम्हारी हमें।
0: अरे भौजी तेन तो कह रहे की सुगाटा से बन जाए, तो मैंने कही सुगाटा से बन जाए तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
1: अच्छा तो मैं एक तेज भूलू करे तुम तो वही की वही घुसरू घुसरू कर ले।
0: अब तो सुनाते है इतनी तेज कहते है मैं कौन बिहारी हूँ?
1: कहा कह रहे लालाजू?
0: कछु नहीं जब कह रहे ऐसे कह रहे थे कि बता दो करूँ काम है, समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लालाजू तुम चलो मैं ही बता दे थोंगी, मुझे तो मालूम है मैंने खुद सुनो तो।
0: अब लेकिन तू भौजी जाने दो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लालाजू तू उतरे जाने है?
0: हाँ उतने तो ठाड़ी सजी
1: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी तो मैंने की, अब तुम्हें बताए दे तू।
0: अरे मैं सब जाना आई हूँ जी मुही ने सज बज के बातें मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लालाजू झूठी कह रहे?
0: अरे भौजी कछु नहीं अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बता दे थूंगी, अब मुझे जाने होते अब मैं टेम हो रहा हूँ वो तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बनाते हैं लही है हाँ। लेकिन ई के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
0: अच्छा अमृत जल बनाने आओ?
1: हाँ यानी कि अमृत पानी बनाने आते, वो कैसे बने थे?
0: हाँ
1: वो जो गैया को गोबर हो बाय ले लो
2: ठीक है,
1: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक जो सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
0: अच्छा
1: है वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो, कह देना के लाने तीन दिन के लाने ठीक है लालाजू? आ रही समझ में?
0: बिल्कुल बिल्कुल नोनी तरह से यहाँ जा रही।
1: कहा कह रहा लालाजू ने कम तरीका से आ रही?
0: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
1: हाँ हाँ भाई तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिन के लाने, लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टार है एक चमचा कहूँ ऐसो घुमा दे, कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब तो बस चमचा को ऐसे घुमाने।
0: कब जी कब हड़िया को नीचे करने के ऊपर करने?
1: अरे लालाजू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जालत के वहाँ में गुठलाना पड़ जाए सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
0: अच्छा ईलंग और उलंग?
1: हाँ सुबह एक ही मिल जाए है तीन दिन में, फिर उसके बाद लालाजू वो तुम्हें जो करने के परते बनाने वो बनेगा अपनो जल जल बनेगा वो।
0: हाँ
1: अब अमृत वो बनाने पर को अमृत मिट्टी के लाने तुम्हें जो करने पड़े कि एक खेत में जितने तुम्हें बनाने उतने में तुम पहले मट्टी बिछाओ, जैसी इतनी सी परत में मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो फिर बनाने तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले ऊके ऊपर गोबर बिछा दे, फिर ऊके ऊपर पानी लगा अमृत पानी लगातार के छत जाने ठीक है लालाजी?
0: अच्छा
1: हाँ और फिर ऊके ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे,
0: फिर से मट्टी बिछाए।
1: हाँ मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गन्ने भैसन को तो ऊपर बिछा दो बाकी आ रही।
0: हाँ आ रही है
1: फिर ऊ के ऊपर फिर मट्टी बिछा दो है, और फिर जो अपन ने बीज लेने पड़े 10 प्रकार के बीज लेने,
0: 10 प्रकार के बीज लेने,
1: हाँ चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और उमे भी बे दू और पानी लगातार छत जाओ ठीक है। फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे भी वो लाला जी ये और करने कुछ जो अपन ने बीज बोए बाकी ऊपर अपन को वो बिछाने का
2: पत्ता
1: डालने ठीक है। डालने के बाद मैं अपन को लाला जी तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात,
0: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ मैं इतनी
1: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दियो
0: अच्छा हूँ का देने आए अब मैं तो ये सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा
1: हूँ तो ठीक है। सो ऊ के बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बड़ी सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही में मिला दू गाय में वही में जो अपन ने लगाई है
0: अच्छा
1: हाउ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दो और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए तो भाई पूरी छोटी छोटी करके काट लो और ऊको फिर से भाई ने मिला दो
0: तो फिर बन गई मट्टी।
1: फिर ऊको आहा फिर ऊको खरुआ लेके मिक्स कर लो
0: अच्छा
1: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं म्याहूं कछु लगा रहे भाई खेकर जाओ पिंछ जाओ भाई डाल दो तो वो एक अपना रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाह में मिल रहा है जैसे साथी इनकी कहावत कि आप बाह में रासायनिक बाह में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो ई में भी उतना ही तत्व मिले और 2-3 चीजें और फायदा भी है ई में।
0: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुन नहीं थी बातें अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
1: हाँ तो ई में 2-3 चीजें जो फायदा की है एक तो ई से अपना स्वास्थ्य सही रहेगा लाला जी और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छा रहेगा लालाजू हो। देखो मैंने अगर टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मियो कछु मैं तो अपनो मोह है जो मियो तुम मोह प्राल लगो बतात बतात।
0: अरे भौजी तो कन्ने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाया जाता
1: है। हाँ हाँ तुम तो वही ले आज 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की वही ले आज काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्की वही तुम तो नाव कर रहे थे सुन के तुम होंगे पक्की आलसी।
0: अरे भौजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले अब तो।
1: हाँ तो लाला जी मैं चली
0: बिल्कुल अब तो भौजी जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार धरती माँ की यही पुकार।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए। तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज में।

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली रहते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें बुलाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है, तो इसी से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करते हो तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो खरपतवार जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं और जो भी बीज आप लगाते हैं वो, बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत ये है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। अच्छा। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि हमको बार बार पानी की, किसी भी फसल में बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं, जैसा मैंने अभी बताया और अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कर भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि या मिट्टी की गुणवत्ता उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे

0: आपको सिंचाई देर से
1: कम देनी पड़ती
0: कम
1: है।
0: देनी पड़ती है। अब जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई
1: जी
0: जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका
1: जी
0: प्रयोग
1: जी
0: नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती
1: जी
0: के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं, और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। या
1: अच्छा
0: अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं, और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले
1: लगा
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं। और
0: क्या, और ये तो और भी अच्छी बात है कि
1: बिल्कुल
0: किचन गार्डन, क्योंकि घर के नजदीक ही होता है,
1: जी
0: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं, तो जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब कि उसका जो
1: जी
0: भी, काफी अच्छी हो जाती है,
1: जी
0: और गुणवत्ता भी काफी, जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है,
1: अच्छा
0: तो किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पर अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही हैं ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अब करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं। तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9425147126, या फिर श्रोताओं आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं। जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम शुभकल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम शुभकल से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभकल, बदलती जलवायु के लिए तैयार हम। शुभकल, बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
0: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
0: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों, नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में, और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ये प्यारे से लोकगीत खो जी खो गा रहे थे बालक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे, आपको ले चलेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उसके बाद वे काम कर लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: नमस्ते नंदिनी जी।
3: नमस्ते
2: नंदिनी जी। हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहाँ आप बड़े हुए हैं?
3: देखिए, मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर रहे थे दंतेवाड़ा बचेली में। एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
2: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
3: तो एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन वर्क की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
2: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
3: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करते कि नहीं आपको ये करना आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। पीपल वे लाइक कि आप मतलब एक आपकी बेटी, आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी। साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना मतलब लाइक इतना इस चीजों पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
3: जी, तो देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बन भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं। और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। मेरा से पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर। ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है और सजग रहना है और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
2: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
3: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ। हमें इस जगह शिफ्ट करना है, हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों के बारे में वैल्यू आएगी। और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट एंड ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा। वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स पे पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
2: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
3: देखिए स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है, अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेस होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेस के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले, तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो एज आई सेड तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी। तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे।
2: शुक्रिया नंदिनी जी।
0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: अपने रेडियो अपनी बातें साथी हरो भैया हरो, अपन अबे सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है। वो अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन शुभकल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी शुभकल। तो भैया ऐसा नहीं है, देखो शुभकल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को शुभकल देखने है गो। सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उनमें भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य भी कर रही हती उनमें भी सफल भई हैंगी। यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में। आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आते हैंगे तो कायना वा पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानी आप सबको सुनो आवे।
4: वर्षा हमें भी लगा था कि नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नो काम करो है गो, और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहतेंगे और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो। कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे। वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगे, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सोगाहौन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खास तौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने का संदेश आप भी दो।
1: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जन तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम खो वर्षा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो। सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो। सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि शुभकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण कर रहेंगे। जैसे अगर हमारे कोनो किसान साथी पूछत हेंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है को तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी। काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत, लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में। सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और आप खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो, तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी।
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी। कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी हो तो, और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री बरसा का चयन किया गया था, और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले है गो, और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितना अच्छा काम करो जा रहा है गो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकत हैंगे, और अगर सबसे ज्यादा जो उनके मतलब फोन आ गए हैंगे कि वर्षा की पूरी कहानी अभी तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है वो हमारा 94-25-14-17-26।
1: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो ऐनी नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है, सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देने है, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई हैगी, बड़ो अच्छा लग रहा है, और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथियों को भी जाते हैं, क्योंकि जो भी चीजें अपन इतने ब्रॉडकास्ट करे थेंगे अगर अपने साथी भैया सुन के उनमें बदलाव नहीं करेंगे तो अपन और सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा करे थेंगे कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे, और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो, काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतनी समाप्त हुए जा रहा है गो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष को दे जावे की इजाजत,
1: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: सास बहू की साजिश
2: या ससुर जी का दुलार,
1: ननद जी से हो नोकझोंक
2: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
1: आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की।
3: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
4: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
3: और श्रोताओं हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की।
4: और साथियों बातें छोटे पर्दे की कार्यक्रम में हम महारानी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे, और सुनकर हमारे श्रोता साथी भी सोचने लगे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास इतना बड़ा है। तो आपको बता देना चाहते हैं, आगे चलते हैं और इस कहानी में हम जानते हैं कि जब महारानी ने देखा कि सिंधिया सरकार की तोपों के मारे अकस्मात पेशवा के फौज हैरान है, तब उन्होंने बड़े आवेश के साथ अपने वहीं के 200 घुड़सवारों को लेकर क्रोध से तड़पती हुई नागिन की तरह सिंधिया के तोपखाने पर हमला किया। उधर तात्या टोपे ने भी अपनी सेना के भिन्न भिन्न भाग करके उन्हें तोपों की मार से बचाया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने वीर और रणापटु सवारों के साथ ज्यों ही सिंधिया के तोपखाने पर टूट पड़ी, त्यों ही गोलंदाज लोग तोप छोड़कर भाग गए। सिंधिया की ओर की दूसरी सेनाएं भी तात्या टोपे और उनकी सेनाओं को देखकर भाग गई। केवल महाराज जयाजी राव सूरता के आवेश में आकर अपनी घाटी वाली पलटन को आगे लाकर विरोधियों से युद्ध करने लगे। एक ओर रणगंगा से अच्छी तरह जमा हुआ एक तरुणा राजकुमार और उसकी खासी 1200 सिलेदार पलटन, और दूसरी ओर दुर्बंध कमे से फंसी हुई एक अबला और घोड़े से उसके रणसूर सवारों का अपूर्व सामना हुआ। जयाजी महाराज के अंतःकरणा में अंग्रेजी सरकार के प्रति बड़ी आदर बुद्धि और प्रेम था, अतएव उनकी क्रोधान खूब प्रचलित हो उठी थी। इससे उनकी वीर श्री अति सुंदर रण खिल रहा था। और इधर महारानी लक्ष्मीबाई के मृदु हृदय से अंग्रेजी सरकार के जुल्मी बर्ताव के कारण भयंकर क्रोध अग्नि धधक उठी थी। इस कारण उनके आवेश का विलक्षणा प्रखर स्वरूप हो गया था। कुछ देर तक दोनों ओर से खूब तलवार पर तलवार भजी। सिंधिया सरकार के भड़कीली पोशाक वाले सिलेदार सिपाही क्षण भर में हैरान हो गए। महारानी के कस पर चढ़े हुए जवां मर्द सवार अपने शस्त्रों को स्वाहा करने लगे।
3: यह देखकर सिंधिया महाराज पीछे की ओर मुड़े और अपनी प्राण रक्षा के लिए दीवान दिनकर राव और दूसरे एक तो अपने विश्वासी सरदारों को साथ लेकर धौलपुर के मार्ग से आगरे के किले आकर उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली। वास्तव में सिंधिया सरकार ने उस समय अपनी राजभक्ति का बहुत अच्छा परिचय दिया और अपनी मित्रता पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी कुछ परवाह ना करके प्राचीन संबंधियों से युद्ध किया। यह बात जिस प्रकार उनके लिए उस समय गौरव की हुई थी, उसी प्रकार झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पराक्रम से स्वराज स्थापन करने की अभिलाषा से जो कीर्ति संपादन की, वह भी सदैव अटल रहेगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि महाराज जयाजी राव सिंधिया को, जिनके शौर्य की बड़े बड़े यूरोपियन लोगों ने तारीफ की है, जिनकी लड़ाई की तैयारी की देखकर शत्रु की छाती दहल उठती और जिनके रथी महारथी सूर सरदारों को देखकर विजयश्री स्वयंवश हो जाती, महारानी के समान एक अबला ने किसी प्रकार की विशेष सहायता ना होने पर भी केवल अपनी तलवार से जोर पर संग्राम से भगा दिया। एक संस्कृत कवि के कथन अनुसार इस नियम की सत्यता अच्छी तरह सिद्ध होती है कि क्रिया सिद्ध सत्वे भवंती महता नोपर के, अर्थात महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके सच्चे पराक्रम पर निर्भर है, ना कि केवल साधनों पर। महाराज जयाजी राव सिंधिया के महारानी लक्ष्मीबाई से पराजित होकर ग्वालियर से आगरा भाग आने पर महाराज महलों में बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। सरकार की सवारी हाहाकार आगरे चले जाने की खबर सुनते ही सब राजा स्त्रियां आत्म संरक्षण के लिए नरबर गांव में चली गई। वहां सिंधिया सरकार के एक दो विश्वास पात्र सरदार और पुराने रिसाले के जो कुछ स्वामी भक्त थे उन्होंने उनकी बड़ी रक्षा की। इधर विद्रोही लोगों ने बड़े आनंद से शहर में प्रवेश किया। ग्वालियर दरबार के जो सरदार और राजनीतिक भीतरी तौर से राव साहब पेशवा और तात्या टोपे आदि का अभिष्ट चिंतन करते थे उनको इस विजय का हाल सुनाकर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने इन लोगों का आगमन सुनकर अपनी आदर वृद्धि प्रकट करने में कोई आगा पीछा नहीं सोचा। ग्वालियर की फौज ने अब राव साहब को ही अपना मुख्य स्वामी समझकर उनके स्वागत के लिए तोपों की सलामी दी और किसी प्रकार का प्रबंध ना कर उन्हें लश्कर राजधानी में आने दिया। पेशवा बड़े ठाट से अपने लवाजमा के साथ सिंधिया के राजमहल में पधारे और वहीं उन्होंने अपना डेरा डाला। महारानी लक्ष्मीबाई लश्कर के पास नवलखा नामक बाग में उतरी। पेशवा के साथ के और दूसरे सरदार तथा मित्र शहर के भिन्न भिन्न महलों में उतरे। मतलब यह कि राव साहब पेशवा को बिना विशेष परिश्रम के थोड़े ही समय में सिंधिया सरकार की राजधानी मिल गई और वहां उनकी स्वतंत्रता दर्शक विजय पताका फहराने लगी। शहर पर अधिकार होते ही तात्या टोपे ने ग्वालियर के किले की तरफ कुछ सेना भेजी। किले के अधिकारी तात्या साहब से पहले ही से मिले हुए थे, इसलिए किले पर अधिकारी करने में उन्हें कुछ प्रयास नहीं पड़ा। तात्या टोपे की सेना पहुंचते ही किले वालों ने दरवाजे खोलकर सारा किला उनके स्वाधीन कर दिया। ग्वालियर के समान जंगी और पहाड़ी किला तथा आगणित युद्ध सामग्री पाकर तात्या को अत्यंत हर्ष हुआ। उनको इस बात का गर्व भी हुआ कि ऐसे अजय किले के अप्रतिम सभ्यार्थ के आगे अब हमारी बराबरी कौन कर सकता है। किला और शहर ले लेने पर विद्रोहियों ने ग्वालियर में बड़ा उपद्रव मचाया। पहले तो उन्होंने रेजिडेंसी पर धावा करके उसे जला दिया और वहां का सारा माल असवाब लूट लिया। इसके बाद सिंधिया सरकार के पुराने राजमहल और उनके अंग्रेज हितेशी सरदारों के महलों पर उन्होंने धावा किया और उन्हें नष्ट करना आरंभ किया। उन्होंने राजमहल का विध्वंस करके दीवान दिनकर राव, सरदार बलवंत राव और माहुरकर आदि प्रधान दरबारी लोगों की हवेलियां मिट्टी में मिला दी। इतना ही नहीं किंतु उन्होंने अपनी धन त्रष्टा तृप्त करने के लिए शहर लूटना भी आरंभ कर दिया। परंतु सौभाग्य से जब राव साहब पेशवा ने इस बात का सख्त हुक्म दिया कि शहर वालों को कोई ना लूटे और ना कोई उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ दे, तब कहीं जाकर यह लूट मार बंद हुई। ग्वालियर विजय करके विद्रोहियों और खासकर राव साहब पेशवा ने सोचा कि अब सिंधिया शाही गई और पेशवाई आई। सब दरबारियों को अनुकूल देखकर राव साहब ने ग्वालियर के सब सरदारों और जागीरदारों को इकट्ठा किया। फौज के अफसर भी जमा हुए। सिंधिया महाराज ने जिन चार सरदारों को बलवाई समझकर कैद कर रखा था उन्हें पेशवा ने छुड़ा दिया और वस्त्र वगैरह प्रदान किए। इन सब की सलाह से आसपास के अनुकूल राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। इस प्रकार सब तैयारी करके पेशवा ने खुद अपने को सिंहासन रूढ़ करने का शुभ मुहूर्त निश्चय किया। 3 तारीख को फूलबाग में बड़ा जंगी दरबार हुआ। पेशवा के अनुकूल सब सरदार, राजनीतिक, सिलेदार आदि अपने अपने योग्य स्थान में सुशोभित हुए। तात्या टोपे और उनके नीचे के सब फौजी सरदार अपनी अपनी पोशाक पहनकर सभा में हाजिर हुए। खुद राव साहब भी पेशवाई राजसी पोशाक पहनकर मस्तक में सिर पेच और कलगी लगाकर कानों में मोतियों के चौकड़े और गले में हार पहनकर पूर्ण वैभव के साथ चौबदार और बंदीगणों की मंगल ध्वनि सुनते हुए दरबार में पधारे। इसके बाद यथाविधि ताजीम और दरबारी लोगों के मुजरे होकर पेशवा सिंह सनारूढ़ हुए। उन्होंने इस खुशी में अपने सरदारों का अभिनंदन किया और बहुमूल वस्त्र अलंकार प्रदान किया। उनका उचित सम्मान किया गया। राम राव गोविंद नामक एक सज्जन को प्रधानमंत्री के वस्त्र दिए और तात्या टोपे को सेनापति नियत किया गया।
4: इसके बाद 8 प्रधान नियत करके उन्हें योग्यता अनुसार अधिकार दिए गए। फौजी लोगों को 20 लाख रुपया बांटा गया। चारों ओर आनंद ही आनंद देख पड़ने लगा। राव साहब ने सिंधिया सरकार के अचानक मिले हुए धन का खूब उपयोग किया। नित्य ब्राह्मण भोजन होने लगे। सैकड़ों भिक्षुओं को उत्तम उत्तम भोजन मिलने लगे। पाकशालाओं में बाजारों आदमी ब्राह्मण भोजन ही के लिए नौकर रखे गए। इस प्रकार राजमहल में नित्य नित्य नए नए उत्सव होने लगे। राव साहब पेशवा तात्या टोपे आदि सुख में निर्गम होकर अपने कर्तव्यों को बिल्कुल भूल गए। यह हाल देखकर महानाई लक्ष्मीबाई को बहुत खेद हुआ। उन्होंने राव साहब से बारंबार यही कहा कि आप इस समय ये सब सुख साज बंद कीजिए। यह समय उत्सव और आनंद करने का नहीं है, युद्ध के लिए तैयार होने का है। परंतु राव साहब पेशवा ने महारानी लक्ष्मीबाई की बातों पर कुछ ध्यान ना दिया। इस पर महारानी लक्ष्मीबाई ने जरा जोर देकर कहा, आप इस समय विजय के आनंद में मग्न हैं, पर यह बात अच्छी नहीं है। सिंधिया का सब खजाना और सेना आपके अधीन है। इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जाएगा तो आपकी सब आशाएं धूल में मिल जाएंगी। अंग्रेज लोग बड़े चालाक और उद्योगी हैं। इस बात का कुछ ठीक नहीं है कि वे कब हम लोगों पर चढ़ाई कर दें। यदि आप ऐसे ही अचेत पड़े रहें तो हमारा नाश होने में तनक भी देर नहीं लगी। अब यह ऐसा आराम छोड़िए और सेना की तैयारी में लगिए। फौजी लोगों की तनख्वाह बढ़ाकर उन्हें उत्साहित करना चाहिए। यह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। बड़ी कठिनाई से कार्य साधन के लिए अनुकूल समय मिला है। अतएव अब आपको सावधानी के साथ युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिए। परंतु बेसमझी के कारण पेशवा के मन पर महारानी के इस उपदेश का कुछ असर ना हुआ। वे बराबर उसी आनंद में मग्न रहे। ब्राह्मण भोजन भी वैसा ही चलता रहा। तात्या टोपे भी अपनी बलवान सेना के घमंड में मस्त रहे। उन्होंने तो यहाँ तक भी समझ लिया कि अब हमारी सेना का मुकाबला अंग्रेज लोग कर ही नहीं सकते।
3: इधर कालपी युद्ध के बाद सरहुजू रोज साहब विश्राम लेने के लिए बंबई जाने वाले थे। उन्होंने भिन्न भिन्न अंग्रेज वीरों के अधीन भिन्न भिन्न पलटने करके चारों ओर विद्रोहियों के नाश कर देने का प्रबंध कर दिया था। कर्नल रॉबर्टसन सेना सहित ग्वालियर की ओर भेजे गए थे। 1 जून को रॉबर्टसन साहब की ओर से विद्रोहियों के ग्वालियर पहुंचने की खबर सरहुजू रोज साहब को मिली। इस खबर से उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहुत सी गोरी और काली फौज, घुड़सवार और तोपखाना आदि मेजर स्टुअर्ट के अधीन करके रॉबर्टसन साहब की मदद के लिए भेज दिया। यह फौज ग्वालियर पहुंचने भी ना पाई थी कि 4 जून को रोज साहब को यह दुखदायक समाचार मिला कि विद्रोही ने ग्वालियर जीत लिया और वहां के महाराज आगरे भाग गए। यह सुनते ही रोज साहब बहुत चिंतित हुए और घबराए कि उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। झांसी और कालपी के जीतने से उन्हें जो आनंद हुआ था उसे वे क्षण भर के लिए भी भूल गए। कहा तो वे विश्राम लेने के लिए बंबई जा रहे थे और कहा उन्हें इस बड़ी भारी चिंता ने आ घेरा, पर वे बड़े दृढ़ और साहसी वीर थे। वे धैर्य के साथ फिर विद्रोहियों की पराजित करने के लिए तैयार हुए। इसमें संदेह नहीं कि इस समय यदि सरहुजू रोज के समान वीर पराक्रमी और चतुर योद्धा विरोधियों के सामना करने के लिए तैयार ना होता तो ग्वालियर में राव साहब पेशवा द्वारा पुनर्जीवित किया हुआ पेशवाई का वृक्ष जोरदार हो जाता और उसकी जड़ें दक्षिण तक जम जाती। सरहुजू रोज ने बहुत जल्दी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैंगिंग को तार द्वारा इस बात की सूचना दी कि मैं स्वयं ग्वालियर पर धावा करके वहां का किला और शहर अपने अधिकार में कर लेने के लिए तैयार हूं, लॉर्ड कैनिंग ने रोज साहब का उत्साह देखकर ग्वालियर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और उन्हीं को इस युद्ध का सेनापति नियुक्त किया गया। सरहुजी रोज ने ज्यों ही फिर अपना कर्तव्य पालन स्वीकार किया, त्यों ही जनरल नेपियर जो उनकी जगह पर आए थे द्वितीय सेनापति बन गए और बड़े उत्साह के साथ उन्हें मदद देने की प्रतिज्ञा की। इससे मालूम होता है कि अंग्रेज लोग राष्ट्र कार्य के लिए आपस में कितने प्रेम से बर्ताव करते हैं। 5 तारीख को सरहुजू रोज और ब्रिगेडियर जनरल नेपियर ने अपनी अपनी सेना के कई भाग करके उसे भिन्न भिन्न अफसरों के सुपुर्द किया और ग्वालियर पर चढ़ाई करने के लिए उपयुक्त मार्ग निश्चय किया। मेजर आर को उन्होंने हैदराबाद कंटिजेंट फौज देकर दक्षिण की ओर के बलवाइयों को दबाने के लिए ग्वालियर और सीपरी के बीच पनिहार के पास भेजा। ब्रिगेडियर इस्मत को राजपूताना फील्ड फोर्स की नवीन सेना का अफसर नियुक्त करके ग्वालियर के पूर्व 5 मील पर कोटे की सराय की और भेजा। कर्नल रिडेल के साथ में बहुत सा तोपखाना देकर उन्हें आगरा और ग्वालियर के रास्ते पर भेजा। स्वयं रोज साहब और जनरल नेपियर ने बहुत सी सेना लेकर कई ओर से मुरार की छावनी पर धावा करने का विचार किया। 6 जून को सरहुजू रोज साहब ने कालपी से ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। इस समय इनके साथ मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट सर रॉबर्ट हैमिल्टन और ग्वालियर के रेजिडेंट मैकफर्नर्स भी थे। इन दोनों से रोज साहब को ग्वालियर का भीतरी हाल और मार्के की जगहों की जानकारी अच्छी तरह से हो गई थी और समय समय पर सलाह लेने का भी अच्छा मौका मिल गया था। अंग्रेजी सेना बड़े वेग से जा रही थी। 11 जून को इंदूर की गांव में स्टुअर्ट साहब की पहली ब्रिगेड से उनकी भेंट हुई। दोनों सेनाएं पहुज नदी पार करके उस पहाड़ी प्रदेश में खूब तेजी और परिश्रम के साथ जा रही थी। रास्ता बहुत विकट होने के कारण यदि सेना के लोगों को दुर्दशा हो गई थी तो उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और सेनापति की आज्ञा अनुसार वे बराबर मार्ग तय करते गए। अंग्रेजी सेना का यह उत्साह और साहस देखकर रोज साहब का मन और भी बढ़ गया।
4: 16 जून को प्रातः काल सरकारी सेना बहादुरपुर नामक गांव में, जहां सिंधिया महाराज की हार हुई थी, जा पहुंची। वहां से उन्हें ग्वालियर के प्राचीन प्रचंड और पहाड़ी किले का भीम रूप देख पड़ने लगा। रोज साहब ने सूक्ष्म रीति से विद्रोहियों के बलवाइयों का निरीक्षण किया। वहां से उन्होंने विभिन्न वृक्षों से घिरे हुए मुरार की छावनी के उच्च प्रदेश को जब देखा तब उन्हें मालूम हुआ कि वह सारा प्रदेश विद्रोहियों के लिए लिया है और छावनी के अग्रभाग में घुड़सवार सेना का रिसाला, दाहिनी ओर तोपखाना और बाईं ओर पैदल फौज आदि रखकर खूब धमासान तैयार कर रखी है। यह हाल देखकर अंग्रेज वीरों ने भी अपनी सेना के कई भाग करके तोपों के हथियार बंद दृढ़ मोर्चे तैयार किए। अंग्रेज फौज के ठहरने के लिए अभी कोई अच्छा मुकाम ना मिला था, इसलिए सरहुज साहब ने सोचा कि सबसे पहले अपनी रणसूर 96वीं पलटन को आगे करके मुरार की छावनी पर हमला करना चाहिए।
3: बिल्कुल, और मनीष भैया हमें लगता है कि अब यहाँ पर हमने काफी सारी बातें कर ली हैं अपने 7वें अध्याय में और हम 7वें अध्याय में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्यादा हम बोलते रहेंगे तो हमारे श्रोताओं को जो है बोरिंग सा लगने लगेगा। तो हम यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत सुनते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी उतना ही निर्धारित भी होता है। तो आइए श्रोताओं, हम यहाँ पर एक पहले गीत सुन लेते हैं।

0: गीत के बाद श्रोताओं आप सभी को बता दें कि अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। सातवें अध्याय में हम चल रहे हैं, आगे इसमें क्या होता है वो हम आपको अगले कार्यक्रम में जरूर बताएंगे।
1: तो साथियों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: सास बहू की साजिश
3: या ससुर जी का दुलार,
2: ननद जी से हो नोकझोंक
3: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
2: आपका अपना कार्यक्रम
3: बातें छोटे पर्दे।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और मित्रों, खेत खलियान कार्यक्रम में आज विशेष कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जल जंगल जमीन की तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो किस तरीके से एक संकल्प यात्रा ददरुआ सरकार से चलकर यहाँ पर ओरछा आकर इन सारी प्राकृतिक जो संसाधन है और साथ साथ में गौ संवर्धन को लेकर बचाने के लिए कितनी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका एक अथक प्रयास डॉक्टर अजय मिश्रा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में आज हम उनको सुनते हैं।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि जब हम अपने पर्यावरण को एक बार देखते हैं और जब उस पर हम बातचीत करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन कारणों से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर अजय मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। इन्होंने ददरुआ सरकार से ओरछा धाम तक एक यात्रा निकाली है, उस यात्रा के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, साथ साथ में पर्यावरण, गौ संवर्धन, इन सारे मुद्दों पर आज हम विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। सभी मेरे भारत के देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से।
0: सर, जानना चाहेंगे कि जो आपने एक संकल्प लिया है, खासतौर पर बड़े सौभाग्य होता है कि इस तरीके की संकल्प यात्रा देश में निकालना, और खासतौर पर आपने एक संकल्प लिया है कि हमें गौ संवर्धन को बचाना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाना है, और खासतौर पर कृषि को लेकर आप बहुत चर्चा में रहते हैं। तो जानना चाहेंगे कि सबसे पहले उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये जो यात्रा आपने सोचा था, उसका मुख्य उद्देश्य सर क्या था?
1: ये जो यात्रा है समाधिया जी,
0: जी
1: ये दरअसल विगत 10-15 वर्षों से यात्रा चल रही है
0: जी।
1: इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि इस सृष्टि में
0: जी
1: ईश्वर ने हम सभी को भेजा है, तो निश्चित इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर आने में हमारे परिवार, माता पिता का योगदान होता है, जैसा कि विधि का विधान है
0: जी।
1: लेकिन जब हम जन्म लेकर जैसे जैसे बड़े होते हैं
0: जी,
1: तो हमें बड़ा करने में
0: जी
1: प्रकृति का, परिवार का
0: जी,
1: समाज का
0: जी,
1: देश का
0: जी
1: बहुत योगदान होता है
0: जी।
1: इन सभी के लिए हमें काम करना चाहिए
0: जी।
1: निश्चित हमें माता पिता के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए
0: जी।
1: आज हम देख रहे हैं
0: जी
1: कोरोना काल में
0: जी
1: जब ऑक्सीजन की कमी हुई
0: जी,
1: तो लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया एक सिलेंडर के लिए, जो धरती माँ वर्षों से
0: जी
1: लाखों वर्षों से
0: जी
1: हमारी पीढ़ियों को ऑक्सीजन फ्री में दे रही है।
0: बिल्कुल सर।
1: और कभी कुछ ही उसने बिल नहीं भेजा,
0: बिल्कुल सर,
1: कभी कुछ मांगती नहीं है,
0: बिल्कुल सर।
1: तो उसके लिए काम करना
0: जी
1: ये सबका कर्तव्य है, सबका धर्म है
0: जी।
1: तो हमारा उद्देश्य है कि लोग पेड़ पौधे लगाएं
0: जी,
1: आने वाली पीढ़ी को
0: जी
1: जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने
0: जी
1: हमें हरा भरा वातावरण दिया था,
0: बिल्कुल सर,
1: अच्छी खेती दी थी, उपजाऊ जमीन, आज हम लोग निरंतर अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माँ को बीमार कर रहे हैं। आज हमारी धरती माँ संकट में है। यदि धरती माँ संकट में होगी तो भविष्य में हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, तो आने वाले पीढ़ी का जीवन संकट में ना आए, इसके लिए ये जन जागरूकता कार्यक्रम हमारा चल रहा है
0: जी। ये सर कब से स्टार्ट हुआ है और इसमें किन किन चीजों को आपने विशेष तौर पर ध्यान दिया है सर?
1: इसमें मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं
0: जी
1: उनकी जो कहावतें हैं, लोगों के लिए वो कहावतें होंगी, मेरे लिए वो जीवन का मूल मंत्र है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है
0: जी
1: कि उत्तम खेती
0: जी
1: मध्यम बांझ,
0: बिल्कुल सर।
1: एक और कहावत है
0: जी
1: कि पहला सुख निरोगी काया,
0: बिल्कुल सही है।
1: यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है
0: जी
1: तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है,
0: बिल्कुल सर।
1: एक स्वस्थ शरीर में
0: जी
1: स्वस्थ विचार आते हैं
0: जी,
1: जब विचार हमारे स्वस्थ होते हैं
0: जी
1: तो हमारे कार्य स्वस्थ होते हैं
0: जी,
1: और जब कार्य स्वस्थ होते हैं तो हमारा जीवन भी समृद्ध होता है,
0: बिल्कुल सर।
1: तो स्वास्थ्य के लिए, चूंकि मेरा सौभाग्य है
0: जी
1: कि मुझे मेरे देश के महान लोग, जैसे कि प्राकृतिक खेती में आदरणीय सुभाष पालेकर जी,
0: बिल्कुल सर,
1: आदरणीय डॉक्टर हमारे त्रिपाठी जी
0: जी,
1: आदरणीय हमारे कुंडू साहब
0: जी,
1: इन सब के साथ मुझे रहने का अवसर मिला है, तो मैंने उनसे जाना है
0: जी।
1: और बड़े ही सौभाग्य की बात है
0: जी
1: कि धरती माता ने
0: जी
1: हमारे देश में
0: जी
1: एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य को प्रकट किया है
0: जी,
1: जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश टाटा, जो विश्व के एक महान आयुर्वेदाचार्य हैं, भारत की जड़ी बूटियों का

0: झंडा लेकर 122 देशों में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे उनका भी सानिध्य मिला। आदरणीय आचार्य मनीष जी जो हिम्स हॉस्पिटल हैं, उनके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जीना सीखो जो उनका कार्यक्रम है
1: जी, जी, जी।
0: ये ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य है कि हमारा देश जागे।
1: जी बिल्कुल।
0: बीमार हो के आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई खर्च ना करके आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें उस पे काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो हमने पहला शुरुआत की खेत से कि स्वास्थ्य के लिए अगर कोई दुनिया में, इन सबसे मेरा एक ही सवाल था कि आप तो मुझे ये बताओ कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते
1: हैं। बिल्कुल सर।
0: समाज स्वस्थ कैसे रह सकता है
1: जी।
0: तो सबका एक ही जवाब था कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन के अलावा दुनिया में कोई दवाई नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम भोजन शुद्ध करते हैं तो वो भोजन दवा का काम करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो भोजन दवा बन सकता है, दवा कभी भोजन नहीं बन सकती है। तो आपके माध्यम से मैं मेरे देशवासियों को ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, अपने जीवन की जो आपकी दिनचर्या है उस पे ध्यान दीजिए। जिस तरह हमारे बुजुर्ग सुबह 5 बजे उठ जाते थे, शाम को सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लेते थे, क्योंकि जब रात्रि में बहुत लेट हम भोजन करते हैं तो जो प्रकृति ने हमें जो भोजन पचाने की मशीन दी है जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं वो मंद हो जाती है। तो भोजन पचता नहीं है, वो भोजन सड़ता है।
1: सड़ता है।
0: जब भोजन सड़ता है तो कई विकार पैदा होते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध भोजन और हमारी जो दिनचर्या है इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बीमार हैं तो आयुर्वेद पे विश्वास करो। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है और आज के समय में उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हमारे डॉक्टर प्रकाश टाटा जी और आचार्य मनीष जी निरंतर रिसर्च कर रहे हैं। तो आज हिम्स हॉस्पिटल में जो लोग 100-100 कीमो ले चुके हैं कैंसर में, वो लोग भी वहाँ आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। किडनी फेलुअर लोग आ रहे हैं, वहाँ लीवर फेलुअर लोग आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो ये जो हमारा स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है इसमें आदरणीय डॉक्टर प्रकाश टाटा जी, आचार्य मनीष जी और हम तीनों लोग मिलकर ये स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन का झंडा लेकर भारत में गांव-गांव जाने का हमारा प्रयास है और समाज को जगाने का हमारा प्रयास है।
1: सर एक चीज हमारे मन में चूंकि बहुत दिनों से भी खटक रही थी, लेकिन उसका जवाब हमें कहीं सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था, हमें कहाँ कमी देखने को मिल रही है। खास तौर पर हम अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में लोग खेती पर आश्रित रहते हैं। समस्या यहाँ पर ये आती है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, समस्या उनका मानना ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करने जाएंगे तो उसके लिए हमें 4 या 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसमें सर आपका क्या मानना है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए?
0: मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में सफलता और असफलता निर्भर करती है कि आपका सलाहकार कौन है।
1: बिल्कुल।
0: महाभारत की कथा हम सबने सुनी है
1: जी।
0: कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद ही उनकी पराजय हुई।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो शकुनी थे। पांडवों के पास छोटी सेना थी फिर भी वो विजय हुए, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब भी जीवन में कोई काम आप करते हैं तो मैं किसान भाइयों से ऐसा आग्रह करूंगा कि आप एक अच्छे सलाहकार के साथ जुड़िए। तो हमारा स्वच्छ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन किसानों के लिए सलाहकार के रूप में काम करता है। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में हमारे बुंदेलखंड के ही मैं बात करता हूँ। बुंदेलखंड के उरई के पास एक गांव है कुकर गांव, वहाँ के हमारे एक प्रगतिशील किसान है शिव शंकर चतुर्वेदी जी। तो 2019 में हमारी उनके साथ मुलाकात हुई। तो मैंने उनको समझाया कि आप एक अपने खेत पे एक बागवानी का एक मॉडल तैयार करिए, तो ऊपर आपको फल मिलेंगे, नीचे आप इंटरक्रॉपिंग में आप खेती करिए और जो आपकी मेड़े हैं उन पे आप ऐसे पौधे लगाइए कि जो आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा पैसा आपको रिटर्न मिल सके। किसान को प्रेजेंट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम, यानी आज कल और परसों, जैसी हमारे यहाँ कहावत है।
1: बिल्कुल।
0: भाई आज

0: जरूरत है हमारा घर चलाने की।
1: बिल्कुल सर,
0: कल हमें हमारे बच्चे के या किसी के कोई शादी विवाह के लिए कार्य पैसे की आवश्यकता है,
1: जी
0: हमें 20 साल बाद हमारे बच्चों की कुछ और कोई कार्यक्रम करेंगे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: उस तरह की प्लानिंग करके
1: जी
0: वहां हमने एक मॉडल बनाया है।
1: जी
0: तो मेरा विशेष आपसे आग्रह रहेगा कि इस
1: जी
0: मॉडल को आप भी प्रमोट करिए।
1: बहुत बढ़िया,
0: उस मॉडल को हमने नाम दिया है खेती का ATM,
1: बहुत
0: यानी
1: बढ़िया सर,
0: किसान को ऑल टाइम पैसा कैसे
1: पैसा
0: मिले।
1: बिल्कुल सर,
0: तो वहां हमने व्यवसायिक खेती में अमरूद, नींबू
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: एप्पल वेयर लगाया हुआ है।
1: जी
0: तो क्या होता है कि अभी हमारा एप्पल वेयर चल रहा है,
1: बिल्कुल सर,
0: फरवरी में चालू हो जाता है,
1: जी
0: फिर हमारा अप्रैल मई से हमारा नींबू चालू हो जाएगा
1: बहुत बढ़िया,
0: और अक्टूबर में हमारा अमरूद चालू
1: अमरूद
0: हो
1: चालू
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाएगा,
0: तो
1: बहुत बढ़िया
0: 12 महीने हमारे शिव शंकर चतुर्वेदी जी को पैसा
1: जी,
0: मिलता
1: आमदनी
0: है।
1: बिल्कुल सर,
0: नीचे हम लोगों ने हल्दी लगाई हुई है,
1: जी,
0: अभी हम लोग हल्दी में प्लान कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी कि इससे हल्दी को ले उखाड़ के
1: जी
0: और इसका हम चिप्स बनाएंगे,
1: बिल्कुल सर,
0: चिप्स बना के हम सेल करेंगे,
1: बहुत
0: क्योंकि आजकल मिलावट खोरी बहुत चल
1: बहुत
0: रही है।
1: ज्यादा बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: हम ये चाहते हैं कि लोग प्योर प्योर ऑर्गेनिक
1: जी
0: और बिल्कुल एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट लें।
1: बिल्कुल सर,
0: चिप्स होने से फायदा ये होगा
1: जी
0: कि वह जो भी खरीदेंगे
1: जी
0: आराम से अपने घर की मिक्सी में उसका पाउडर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: तो उसमें चिप्स में कोई मिलावट नहीं हो सकती।
1: जी
0: अपने घर में आप पाउडर बनाएंगे
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: वो एकदम ओरिजिनल बनेगा,
1: बिल्कुल सर,
0: 100% ऑर्गेनिक है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो उस मॉडल को
1: जी
0: जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों से
1: जी
0: कि उरई के पास कुकरगांव है, शिव शंकर चतुर्वेदी जी के मॉडल पे
1: जी
0: आप लोग जरूर जाइए। वहां
1: बिल्कुल
0: सैकड़ों किसान आते हैं, उस मॉडल को देख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं।
1: जी
0: वहां जब सुन के और जब हम देखेंगे
1: जी
0: तो हमें विश्वास होगा
1: जी
0: कि नहीं, ये भी संभव है
1: बिल्कुल
0: और
1: सर,
0: ऐसा हो सकता है कि 1 हेक्टेयर से भी किसान 5 से 7 लाख रुपया कमा सकता है।
1: जी
0: तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन में आप जुड़िए।
1: जी
0: हम कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेते हैं,
1: बहुत बढ़िया
0: निःशुल्क जोड़ते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं,
1: बहुत
0: किसी
1: बढ़िया सर,
0: प्रकार का कोई
1: बहुत
0: परामर्श
1: बढ़िया
0: शुल्क नहीं लेते हैं।
1: बहुत
0: तो
1: बढ़िया
0: हमारे साथ जुड़ें,
1: बिल्कुल सर,
0: आपको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बागवानी, मिश्रित खेती और स्वावलंबन के बारे में
1: जी
0: हम पूरा आपको प्रशिक्षण देंगे।
1: बहुत बढ़िया, क्योंकि सर एक चीज और उसमें हम जोड़ना चाहेंगे, हम लोगों ने भी सर 2009 में
0: जी
1: इस तरीके की मुहिम एक छेड़ी हुई थी कि शुभ कल, आने वाला कल किस तरीके से शुभ हो, हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक हमारी परियोजना थी सर, उसमें हमने 100 गांव में इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, जैसे कि किचन गार्डन हुआ सर, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और हम जो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं उसको लेकर हम लोगों ने एक जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति गेम खिलाया गया था, उसी तरीके से हम लोगों ने खिलाया था। समस्या ये आई थी कि शुरुआत में थोड़ी हमें कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने जब इस तरीके की परियोजना में देखा सुना तो वो जुड़ना स्टार्ट हुआ। समस्या अब यहाँ आई है जब परियोजना हमारी बंद हो गई है, परियोजना बंद होने के बाद 1-2 साल उन्होंने प्रयास किया कि इस क्या नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे बढ़ाएं। अब समस्या वहां पर ये आ रही है उनको कि मार्केटिंग की समस्या, कि हम कहाँ पर, चूंकि जब ऑर्गेनिक को लेकर हम बाजार में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का उगा हुआ ये चीज है, इसको आप खरीदिएगा थोड़ा रेट आपका बढ़ के मिलेगा, समस्या ये आती है कि लोग उसको सुनते नहीं है। इसमें सर आपकी क्या राय है, किस तरीके से लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जागरूक होंगे?
0: निश्चित सवाल यह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसमें हमारा जो स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है,
1: जी
0: इसका काम यही है।
1: जी
0: जैसे हमारा किसान है,
1: जी
0: तो किसान गांव में है,
1: जी
0: उनके पास उत्पाद तो है,
1: जी
0: लेकिन जैविक या अपना नेचुरल प्रोडक्ट है।
1: जी
0: बहुत हमारे ऐसे लोग हैं
1: जी
0: जो ये प्रोडक्ट चाहते हैं,
1: बिल्कुल सर,
0: उन्हें मालूम नहीं है ये
1: जी
0: क्या है। दोनों के बीच में गैप है।
1: गैप है बिल्कुल सर,
0: गांव में जो व्यक्ति बैठा है वो इसलिए नर्वस है कि मैं पूरा प्राकृतिक कर रहा हूँ,
1: जी
0: मेरा उत्पादन भी कम हो रहा है,
1: जी
0: लेकिन मुझे दाम अच्छा नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल सर,
0: शहर में जो लोग बैठे हैं वो इसलिए परेशान है कि पैसा पूरा खर्च हो रहा है,
1: हम
0: प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा
1: बिल्कुल
0: है।
1: सर,
0: तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सर,
0: शहर में भी हम लोग सदस्य बना रहे हैं
1: जी,
0: और गांव में भी हम लोग किसानों को सदस्य बना रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया,
0: शहर में हम लोगों ने एक मिशन शुरू किया है,
1: जी
0: खुशहाल जिंदगी।
1: जी
0: खुशहाल जिंदगी हम कैसे जिए,
1: जी
0: शुरुआत वहीं

0: भोजन से, शुरुआत भोजन से ही होगी।
1: जी जी जी जी,
0: जीवन में समाधिया जी खुशहाली बिना हेल्थ के संभव नहीं
1: है। बिल्कुल,
0: अगर आप हेल्थ से अच्छे हैं तो आप सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो ऐसे किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन के साथ जुड़े। आपकी जो मार्केटिंग की समस्या है उसका भी हम लोग मिलकर हल निकालेंगे। नंबर दो, आज के समय में हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि अब वक्त गांव का है।
1: बिल्कुल सर।
0: गांव का इसलिए है कि शायद जो पश्चिमी सभ्यता है उसका भोग भोग के अब लोग थक चुके हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: अब लोग गांव में जाना चाहते हैं।
1: जी।
0: अभी हमारे यहां भारत में ग्रामीण टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: अब लोग शहर में की अपेक्षा
1: गांव में
0: रुकना पसंद कर रहे हैं। आपके यहाँ नजदीक में लाड़पुरा गांव है, वहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो जो वहाँ पे होम स्टे हैं, दो चार लोगों का मेरा परिचय है, मैं पूछता रहता हूँ कैसा चल रहा है। बोले सर बहुत अच्छा चल रहा है, यात्री आ रहे हैं। तो अब लोग गाँव की तरफ लौट रहे हैं और लोग देसी प्रोडक्ट की तरफ लौट रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमारे देश में बहुत सारे ऐसे होटल बन गए हैं जहाँ देसी भोजन मिलता है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। शहरों में भी अब लोग ये सब पूड़ी पराठा और फास्ट फूड छोड़कर अब लोग दाल टिक्कर को लोग पसंद करने लगे हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो मेरा ऐसा आग्रह है मेरा ग्रामीण भाई बहनों से, नौजवानों से, किसानों से कि निराश मत होइए। समय आपका आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: इस और आपको काम करने की जरूरत है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप फेसबुक है, यूट्यूब है, हमारे जो सोशल मीडिया है उस पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करिए। और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगी। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लाइसेंस क्या चाहिए, ये इस तरह की जो सहयोग चाहिए तो वो हम उनको करेंगे। ये आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर। और बस लास्ट में हमारा एक सवाल है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं बहुत सारे दिन में मन में सवाल चलते हैं कि आज पहले कितना जंगल हुआ करता था, खासतौर पर अगर ओरछा की ओर देखा जाए। आज हम जान रहे हैं कि नई देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी रोड बन रहे हैं, बहुत सारी सिटियां बन रही हैं, डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो जंगलों की कटाई खासतौर पर देखने को और सुनने को मिल जाती है तो मन में काफी मतलब दुख होता है कि इस तरीके का जंगल हुआ करता था, अब नहीं है। आपका क्या मानना है सर?
0: इसमें मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। एक मैं छोटी सी एक कहानी इसमें जोड़ता हूँ। एक दूध देने वाला व्यक्ति था, गांव का सीधा साधा किसान। बाजार दूध देने जाता था और वहां से उस बेकरी से वो एक किलो बेकरी लेके घर पे आता था।
1: बिल्कुल।
0: एक दिन उस दुकानदार ने कहा कि मुझे एक किलो घी चाहिए। तो वो दूसरे दिन घी लेके आ गया।
1: बिल्कुल।
0: दुकानदार ने जब उसको तोला तो घी 800 ग्राम निकला। दुकानदार ने उसके ऊपर केस कर दिया। केस कर दिया तो वो अदालत में पेश हुआ किसान। तो जज साहब ने कहा कि तुमने चीटिंग की है और तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दायर हो गया है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो किसान ने कहा मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जज साहब बोले कि तुमने इन सेठ जी को एक किलो की जगह 800 ग्राम घी दिया है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसने कहा हजूर मैं तो किसान हूँ, मेरे पास तो तराजू भी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये सेठ है।
1: बिल्कुल।
0: मैं इनके यहाँ से एक किलो वो लेके गया था, अभी बेकरी, एक किलो बेकरी लेके गया था, उसी के बदले मैंने घी तोला।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये है। आज क्या हो रहा है, हम लोग एक ही ओर दौड़ लगा रहे हैं, पैसे की ओर।
1: बिल्कुल सर।
0: जब पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तब हम ना नदी का ध्यान रखेंगे, ना पौधों का ध्यान रखेंगे, ना परिवार का ध्यान रखेंगे, ना समाज का ध्यान रखेंगे।
1: बिल्कुल सर।
0: मेरा स्पष्ट मानना है कि ठीक है पैसा आवश्यक है, लेकिन जीवन में केवल पैसे से ही अगर आप समृद्ध हो गए तो आप समृद्ध नहीं है।
1: बिल्कुल सर।
0: आपको परिवार से भी समृद्ध होना है
1: जी,
0: आपको समाज से भी समृद्ध होना है
1: जी,
0: आपको शरीर से भी समृद्ध होना है
1: जी।
0: इन सबसे अगर समृद्ध होना है तो हमें बैलेंस समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो नदी है, जो तालाब है, जो पहाड़ है, जो पक्षी है।

0: जीव जंतु है, हमारे यहाँ सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया,
1: बहुत
0: ये
1: बढ़िया,
0: वो धरती है जहां सबको जीने का अधिकार है
1: अधिकार है
0: और
1: बिल्कुल
0: सहजीवन। हमें अधिकार नहीं है
1: जी,
0: कि हम किसी को नष्ट करें
1: बिल्कुल सर,
0: या किसी को समाप्त करें।
1: बिल्कुल सर
0: जिस दिन हम पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे,
1: जी,
0: ऑक्सीजन कौन देगा?
1: बिल्कुल सर
0: आपकी ये जो घमंड है पैसे का,
1: जी
0: भूल गए 5 साल
1: जी
0: पिछले 2020 में
1: बीस में का
0: सारे घमंड
1: जी,
0: चूर हो गए थे
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सर, बिल्कुल सर
0: प्रकृति का ये छोटा सा रूप
1: जी,
0: जिसे पूरी दुनिया सह नहीं पाई,
1: बिल्कुल सर
0: ये रूप
1: जी
0: कभी दोबारा ना बने।
1: जी
0: इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से कि
1: जी
0: अपने जीवन में
1: जी
0: आप अपने जन्मदिन पर,
1: जी
0: अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर हजारों लाखों खर्च करते हो,
1: जी
0: करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है,
1: जी
0: भगवान ने आपको दिया है, खूब खर्च करो।
1: जी
0: लेकिन जिस पृथ्वी ने, जिस धरती माँ ने हमें जीवन दिया है और हमें सांसें दे रही है, उसके लिए हर साल कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति जरूर लगाए, ये अपील मैं आपके माध्यम से
1: बहुत बढ़िया
0: करना चाहता
1: जी
0: हूं।
1: जी
0: अगर हम एक एक पौधा लगाना शुरू करेंगे
1: जी
0: तो देश में हर साल करोड़ों पौधे लगने लगेंगे
1: बिल्कुल
0: और
1: सर
0: धीरे धीरे क्लाइमेट की जो समस्या है
1: जी,
0: इस पर नियंत्रण होगा,
1: बिल्कुल सर,
0: जरूर होगा।
1: बिल्कुल सर
0: और गौ माता के लिए मैं जरूर कहूंगा
1: जी,
0: कि आज जो गौ माता दर दर भटक रही हैं,
1: बिल्कुल सर
0: मेरा आप सबसे आग्रह है,
1: जी
0: कोई चीज जब हमारे जीवन में नहीं होती है ना,
1: जी
0: तब हमें उसका एहसास होता
1: एहसास
0: है।
1: होता है, बिल्कुल सर
0: एक चीन की घटना है,
1: जी
0: मुझे ठीक से सन याद नहीं आ रहा है,
1: जी
0: तो वहां किसी ने प्रधानमंत्री को सलाह दे दी होगी
1: जी
0: कि जो फसल में जो गौरैया चिड़िया होती है
1: जी
0: ये बहुत नुकसान करती है,
1: बिल्कुल सर,
0: बोले इस गौरैया चिड़िया को पूरा समाप्त करवा देना चाहिए, और
1: बताइए
0: पूरा चीन गौरैया को मारने में लग गया।
1: बताइए
0: अंत में परिणाम ये हुआ, गौरैया तो मर गई लेकिन फसल में इतने कीड़े आ गए कि वहां लाखों लोग भूख
1: बताइए
0: से
1: सर,
0: मरे,
1: बिल्कुल सर
0: लाखों लोग
1: भूख से
0: भूख
1: मरे
0: से मरे। तो जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं, हमारा
1: जी
0: हमारे खेत में केंचुआ
1: जी जी सर,
0: हमारा सबसे बड़ा मित्र है,
1: बिल्कुल सर
0: जो हमारे खेत में लाखों छेद करता है,
1: जी,
0: मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।
1: बिल्कुल
0: जब
1: सर
0: बरसात होती है
1: जी,
0: उन्हीं छेदों से धीरे धीरे पानी अवशोषित होता है
1: बिल्कुल
0: और
1: सर
0: वही पानी हमको पीने को मिलता है। हमारे जो चूहे हैं, कछुआ है, सांप है, एक भी चीज प्रकृति ने व्यर्थ नहीं बनाई है।
1: बिल्कुल सर,
0: मेरे देशवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपकी एक भी योजना चलने वाली नहीं है,
1: बिल्कुल सर
0: आप कितनी भी प्लान कर लो।
1: जी सर
0: आज जितने बड़े बड़े किले हमको खाली दिख रहे हैं,
1: जी,
0: क्या उन्होंने प्लान नहीं किया होगा कि
1: बिल्कुल सर
0: इसमें हमारा परिवार रहेगा,
1: बिल्कुल सर
0: हमारी पीढ़ियां रहेंगी? क्या
1: जी,
0: वहां रह रही हैं आज? नहीं रह रही
1: नहीं रहे
0: ना,
1: बिल्कुल सर,
0: सारे किले खाली पड़े हैं। तो
1: बिल्कुल सर
0: आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाकर जो धन इकट्ठा कर रहे हो, इससे आपकी कोई प्लानिंग चलने वाली नहीं है। ये
1: बिल्कुल
0: कहीं
1: सर,
0: ना कहीं आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचाएगी। पैसा कमाइए ईमानदारी से।
1: बिल्कुल सर
0: आज जो मिलावटखोर लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा,
1: जी
0: अरे हम एक दूसरे को जहर देंगे तो
1: जी
0: एक दिन हम सब नष्ट हो
1: नष्ट हो
0: जाएंगे।
1: जाएगा, बिल्कुल सर,
0: हमें खुद सुधरना है।
1: बिल्कुल सर,
0: हम सुधरेंगे जब सुधरेगा,
1: बिल्कुल
0: दुनिया
1: सर,
0: को मत सुधारो, एक पौधा साल में एक बार हमें लगाना है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: सर,
0: हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए।
1: बिल्कुल सर
0: गाय माता को हम अपने घर पे नहीं पाल सकते हैं, तो
1: जी,
0: कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हिंदू होने के नाते हम अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में कम से कम एक धूप बत्ती सुबह और
1: बिल्कुल
0: एक
1: सर,
0: धूप बत्ती शाम को लगाते हैं।
1: बहुत बढ़िया
0: यही धूप बत्ती
1: जी,
0: यदि हम गौ माता के गोबर से बनी हुई
1: बहुत बढ़िया,
0: खरीदना चालू कर दें,
1: बिल्कुल सर,
0: तो भी आप गौ भक्त कहलाएंगे।
1: बिल्कुल
0: जब
1: सर
0: आप धूप बत्ती खरीदेंगे,
1: जी,
0: धूप बत्ती की मांग बढ़ेगी,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: जो हमारे गौ भक्त गौ माता को पाल रहे हैं वो और ज्यादा गौ माताओं को पालेंगे।
1: जी
0: तो मेरा जहां भी इस आपके जो चैनल को लोग सुनते हैं,
1: जी
0: मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है
1: बहुत
0: कि
1: बढ़िया
0: कम से कम आप लोग अपने घर में गौ माता से बने हुए उत्पादों का उपयोग शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: गौ माता भक्त आप कहलाएंगे और गौ माता के आशीर्वाद से आपका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध
1: बहुत
0: रहेगा, ये
1: बढ़िया
0: निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा।
1: जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय का भी एक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं उसको, समय का भी चीज रहती है कि एक कार्यक्रम को एक समय रहता है, तो हम आगे ना बढ़ते हुए

0: सर आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद का अदा करना चाहते हैं, और खास तौर पर उन साथियों से फिर से दोबारा सर के माध्यम से, चूंकि सर ने अपील की है और हम भी अपील रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जो सर ने संकल्प के लिए बात बताई है वो संकल्प आप जरूर लीजिएगा। हमें गौ माता को बचाना है, हमें देश को बचाना है, हमें अपने जल जमीन और जंगल को भी बचाना है, और इनकी प्रतिज्ञा हमें करनी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद समाधिया जी आपका, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने इस विशेष कार्यक्रम को सुना, हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एक प्रयास करने चाहिए, एक मुहिम हमें चलानी चाहिए, और खासतौर पर इन सारी चीजों को अगर हमें बचाना है, प्राकृतिक चीजों का जो हम दोहन कर रहे हैं उनको हमें बचाना होगा, साथ साथ में हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बातचीत कर रहे हैं तो उसको अपने खेतों में अपनाना होगा, साथ में गौ संवर्धन को लेकर गौ माता को बचाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है उस पर हमें एक बार फिर से विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस विशेष कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी इसे सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव जरूर करेंगे। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। अब आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और यदि आपको कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

और जब पूछना कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: नारियां देवी का रूप होती है, बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा मैं पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काई? और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा मैं पुजारी हूँ।
0: और?

0: कहना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना
0: कल

ना, फिर उसने भगवान को मानने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब

खाए ले

0: देखे आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरान।

0: आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून।
1: अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

0: सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना, सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष कार्यक्रम आजीविका में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, आजीविका की बात जहाँ पर आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आजीविका है क्या। लेकिन हमने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि आजीविका यानी कि हमारी,
1: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, और आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी आय को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं
0: जी,
1: और कैसे हमारे श्रोता साथी, चूंकि बुंदेलखंड में हम आप देख रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं अपना स्वयं का धंधा करके।
0: जी हाँ साथियों, जैसे कि हमने आपसे कहा भी था कि दूसरों की मजदूरी करने से अच्छी है कि हम अपना खुद का एक छोटा सा धंधा लगाएं, यानी कि व्यवसाय लगाएं, जिससे हमें दो पैसे की आमदनी होगी।
1: बिल्कुल वर्षा जी, और बहुत सारे जब हम नुक्कड़ों के पास मिलने जाते हैं तो बहुत सारी हमें सफल कहानी हमें वहाँ पे मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे सफल लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने रेडियो बुंदेलखंड पर आजीविका का कार्यक्रम सुनकर अपने खुद का व्यवसाय को शुरुआत की है। तो ऐसे लोगों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उनकी सफल कहानियों को बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पहले ही बताया था, सतीश साहू जिन्होंने अपना दूसरों के यहाँ नौकरी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, तो एक ना एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आय को बढ़ाया है, दूसरों की अपेक्षा अपने घर की आय को और बढ़ोतरी की है।
0: जी हाँ, जैसा कि साथियों उन्होंने बताया था कि हम जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे, वो ऐसे में उन्हें क्या क्या परेशानी होती थी। एक तो टाइम से नहीं पहुँचते थे, घर टाइम से नहीं आ पाते थे, और दूसरी चीज उन्हें तनख्वाह जो मिलती थी, जो पैसा महीने का दिया जाता था, वो समय पे नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर वो पैसा हमें समय पे ना मिले तो किसी काम का नहीं होता है हमारे।
1: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, जब तक हमें स्वयं का व्यवसाय, चाहे वो हम 2 घंटे अपने लिए क्यों नहीं दें, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आप देखते हैं कि 24 घंटे में से 12 घंटे दूसरों के मजदूरी करने के बाद हमें तनख्वाह वो 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए इस तरीके का देते हैं। हम उनके लिए जब मेहनत करते हैं, क्यों ना हम अपने लिए, खुद के लिए इतनी सारी मेहनत करें कि हम सफलता को हम चलते चले जाएंगे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग हमें नाम से पहचानेंगे।
0: बिल्कुल, और सफल जब ही होंगे जब आप सोच लेंगे कि हमें करना क्या है आखिर, और जब आप करने का निश्चय कर लेंगे तो फिर हमें आप जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
1: बिल्कुल वर्षा जी, और इस कार्यक्रम में हम दोस्तों को बात कराएंगे हीरालाल कोरी जी से, जिनसे बात करेंगे कि उन्होंने तौलिया का व्यवसाय, चूंकि बहुत सारे हमारे श्रोता साथी सोचते होंगे कि कुछ जातिगत जो व्यवसाय रहते हैं वो उनकी ही जाति के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी जाति बात से हटकर उस व्यवसाय को सोचना चाहिए।
0: यानी कि आपके कहने का मतलब है मनीष जी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि मटका बनाना, तौलिया बनाना, ये बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको उस काम को करने में रुचि है तो आप बिल्कुल ये सोच हटा दीजिए जातिवाद की कि ये यही जाति का करेगा, हम भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर एक मटका बनाना जानते हैं और हम कुम्हार नहीं हैं, तो क्या हम अपनी रुचि को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उससे 2 पैसे नहीं कमा सकते हैं? क्या हम अपनी रुचि को आगे ले जाकर लोगों को ये बताएं कि जातिवाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तौलिया का व्यवसाय, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि मऊ रानीपुर में सबसे ज्यादा तौलिया का व्यवसाय होता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अपने आसपास में तो निवाड़ी में बहुत ज्यादा तौलिया का व्यवसाय चलता है। तो ऐसे में किस तरीके से हमारी युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इस चर्चा को सुनने से पहले हम एक गीत के साथ हम आपको मनोरंजन कराते हैं, और गीत के बाद आपको सीधा हम निवाड़ी ले चलेंगे और जहां पर हीरालाल जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो आइए इसी क्रम में एक हम गीत को सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और दोस्तों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना जिसे गा रहे थे दयाशंकर और उनके साथी।
1: जी हाँ, अब हम आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि मनोरंजन के बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे निवाड़ी हीरा लाल जी के पास, जो कि आपको बताएंगे कि तौलिए का व्यवसाय किस तरह से किया जाता है और क्या क्या समस्या उनको आती है और क्या क्या सावधानी इसको करने में रखनी चाहिए।
0: तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अपना परिचय दें पहले।
2: हीरा लाल पुरी कालपुरा निवाड़ी।

0: तो हिलाल जी आप क्या करते हैं इस समय पर?
1: हम तौलिया के काम करते हैं, क्या है, मशीनें लगाई हुई हैं पावर लूम।
0: अच्छा, तो जैसे शुरुआत बात करें अगर, तो आप तौलिया कैसे, कहाँ से इसका माल लाते हैं, कच्चा माल कहाँ से?
1: कच्चा माल आता हमारा रानीपुर से।
0: कैसा, किस हिसाब से लाते हैं?
1: जैसे धागा है वो तो 100 रुपए किलो भी आता है, 150 भी आता है, हर प्रकार का धागा खरीद के फिर बेलन भी भरवाते हैं।
0: तो इन सब में कितना खर्चा आ जाता है?
1: मैं आप बेलन भराई जैसे 5000 के आसपास तो बेलन भर जाता है, और फिर धागा उसके बुनने के लिए, माल बनाने के लिए वो अलग खरीदना पड़ता है।
0: तो ये सारा सामान आपको वहीं से
1: रानीपुर मिल जाता है?
0: अच्छा, फिर वहाँ से लाने में कैसा, क्या
1: लाते क्या, जैसे इधर से गाड़ी जाती है, गाड़ी में आता है माल,
0: गाड़ी में आता है, फिर वो धागा यहाँ लाने के बाद आप क्या करते हैं?
1: उसका धागा ले जाने के बाद पावर लूम पे जैसे बेलन रख दिया और धागा हाथ से काड़ी भरती है।
0: अच्छा,
1: उसके बाद बस पावर लूम पे काम करो, कपड़ा बनने लगता है।
0: कपड़ा बने, कितने लोगों को आप लगाए हुए हैं?
1: हम जैसे एक मजदूर लगाए हुए, खुद करते हैं 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए आप नहीं करते तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी?
1: जैसे 2 लोगों की पड़ेगी, जैसे 3 पावर लूम लगाए हुए हैं, घर का धंधा है ये।
0: अच्छा,
1: ज्यादा तो लगाए नहीं हुए हैं, जैसे ज्यादा लगाओ मशीन है तो ज्यादा मजदूर लगेगा।
0: अच्छा,
1: 3 पावर लूम लगी हैं तो 2 मजदूर चल जाते हैं उसमें।
0: अच्छा, तो एक दिन में कितना आप बना लेते हैं तौलिया की बात करें तो?
1: एक दिन में तौलिया बन जाती है 40 एक मशीन पे,
0: 40
1: तौलिया बनती है,
0: पूरी कम्प्लीट हो जाती है?
1: कम्प्लीट हो जाती है।
0: अच्छा, और एक महीने में?
1: एक महीने में आप इसका हिसाब लगा लो, जैसे 40 लगी एक दिन में तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा, ये तो पहले का है, थोड़ा कभी लाइट भी नहीं रहे, कहीं कुछ वजह है, हिसाब से प्रोडक्शन कम भी हो सकता।
0: और जो मशीन आप लगाए हैं उसमें लाइट का कैसा क्या कनेक्शन आपने करवाया?
1: हमारा कनेक्शन है 3 फेज का कनेक्शन करा है।
0: हाँ, तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे आप कनेक्शन भी करें वो भी बिल भरना पड़ता है?
1: हाँ, क्यों नहीं मिलता, वो तो इतना तो मिल ही जाता है यदि परिवार चलाने युग।
0: अच्छा, अपना परिवार चलाने युग, और जो व्यक्ति आपके यहाँ लगा हुआ है मजदूर
1: उसका भी परिवार चल जाता है?
0: कितना उसको देते हैं?
1: उसको जैसे उसका हो जाता है 6 दिन में 1500 के आसपास का।
0: अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे तौलिया बनाने से पहले?
1: तौलिया बनाने के से पहले क्या, जैसे पहले तो हम जैसे कोई दुकान टेलरिंग की खोले थे मार्केट में, सिलाई का काम करते थे, फिर दिमाग में आया कि पावर लूम लगा लो घर में, तो पावर लूम लगा लीजिए।
0: अच्छा, तो मशीन आप जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे जी? पावर लूम
1: जी, मशीन ऐसा है कि जैसे इधर की इधर बिकती रहती है, कोई नहीं करता है धंधा, कोई कुछ और बदल देता है, इधर की इधर मशीनें मिल जाती हैं।
0: अच्छा, नहीं तो अगर जैसे किसी को खरीदना हो जी मशीनें, तो कहाँ से?
1: तो ये टांडा वगैरह जाना पड़ेगा, टांडा में है।
0: ये कोई समूह के द्वारा मिलती है या फिर?
1: हाँ, ये समूह के द्वारा भी मिलती है, अभी रानीपुर में जो है यूपी में आपको सरकार ने दी है 64 की मशीनें बड़ी बड़ी, और मकान बनाने के लिए लगाने के लिए व्यवस्था पैसा दिया है, 2.5-3 लाख रुपया दिया है। अच्छा, समूह द्वारा भी मिलता है, सरकार भी दे देती है।
0: तो समूह द्वारा अगर कोई लगाना चाहे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे?
1: हाँ, समूह द्वारा
0: सरकार पैसा देती है।
1: हाँ, उससे ज्यादा मशीनें मिल जाएंगी, उसको पूंजी भी मिल जाएगी, वो घर का बिजनेस करने लगेगा।
0: अच्छा, अब आपकी मार्केटिंग की बात अगर करें तो आपका बाजार कहाँ होता है, आप कैसे इसको बाजार में सेल करते हैं?
1: हम लोगों की मार्केट ये ऐसा है कि व्यापारी बने हुए हैं बाहर के, तेजरी से गांठे पैक होकर चली जाती है, तैयार होके माल
0: पूरी कंप्लीट या फिर?
1: पूरी कंप्लीट, मैं फ्रेश फिनिशिंग होके तैयार पक्की बन जाती है, बाहर जाता है, राजस्थान जाता है, भोपाल चला जाए, बहुत जगह जाता माल तो।
0: अच्छा, तो आपको महीने में कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है?
1: महीने में वो ये 15-20 हजार रुपए की कमाई पर बाल चलाने लगभग।
0: अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं?
1: बस इसके अलावा क्या है, वही काम है।
0: अच्छा, कितने घंटे आप देते हैं इस काम में?
1: इसमें पूरा लगा रहते हैं वो तो, 10 घंटे करीब काम देना पड़ता है।
0: जैसे सुबह से उठे तो सीधा?
1: बस उसी में वही काम है और है क्या।
0: अच्छा, अगर कोई और लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसको क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए?
1: और कोई लगाना चाहे तो सावधानी क्या, उसको पावर लूम चलाना सीखना पड़ेगा, जैसे नहीं जानता है तो उसको सभी सीखना पड़ेगा, तो धागे का काम है, तैयारी का काम है।
0: आपकी बात अगर करें तो आपने कहाँ से सीखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी?
1: ट्रेनिंग क्या, हम इस काम को नहीं जानते थे, जैसे पावर लूम लगा ली, कारीगर लोग कर रहे हैं काम, सुधारना भी नहीं जानते थे मशीन, तो वो धीरे धीरे कारीगर लोग चलाए, हम भी सीख गए।
0: बस पहले कारीगर लगाया,
1: कारीगर लगाया, उनने किया काम, जैसे बिगड़ गई मशीन तो मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री को देखा ये किस प्रकार का उधारता है, तो अपन देखते देखते अपन भी होशियार हो गए।
0: अच्छा, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसी क्या क्या परेशानी आई?
1: बहुत सी परेशानी आई थी हमको,

0: जैसे उसमें कुछ जानते ही नहीं थे, थोड़ा भी कुछ बिगड़ जाए, थोड़ा चमड़ा टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो मिस्त्री को पकड़ते थे, उसको पैसा देना पड़ता था।
1: अच्छा, और आप अगर बिगड़ जाए तो?
0: अब तो खुद कर लेते हैं, सब
1: खुद कर लेते हैं। अच्छा, सब समझ हो गई है?
0: सब समझ हो गई है।
1: अच्छा, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसको जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी?
0: जगह के लिए शायद कोई दो मशीन लगाना पड़े या तीन लगाए छह लगाए, उस हिसाब से जगह लगती है। जैसे 12x12 के कमरे में दो मशीनें लगती है, समझ लो आप, और ज्यादा मशीन है तो उस हिसाब से जगह चाहिए।
1: तो अभी आप दो मशीनें लगाए?
0: हम तीन लगाए हुए।
1: अच्छा, और अगर कोई खुले माल में आपसे लेना चाहे, जैसे एक तौलिया दो या तीन चार पाँच, ऐसे में आप बेचते हैं?
0: दे देते हैं।
1: अच्छा, कितने की एक तौलिया जाती है?
0: जैसे तौलिया कपे के ऊपर है, 12 रुपए की भी, 15 की भी है, 35 की भी है, ये तो वेरायटी अलग अलग
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आपने इस बातचीत को सुना और जो हीरा लाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं तौलिया का व्यवसाय करके, तो हमें भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए।
1: हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तौलिये का ही व्यवसाय करना चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको किसी भी काम को करने में अच्छी लगन हो, अच्छी पकड़ हो, आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम खुद का होना चाहिए, तो आप वो जरूर करें और हो सकता है कि उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और मदद करने के लिए चूंकि आपको लगता है कि हमें परेशानी आ रही है ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग्स इन सारे व्यवसायों के लिए कराती हैं। तो आप जुड़िएगा हमसे और बात करिएगा और इस व्यवसाय संबंधी बातचीत करने के लिए हम आपको फोन नंबर दे देते हैं। फोन नंबर है हमारा 94-25-14-17-26।
1: श्रोता साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बुंदेलखंड बार बार आजीविका से जुड़ी हुई बातों पर क्यों जोर दे रहा है, तो आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड पर जाते हैं नुक्कड़ नाटक या नैरो कास्टिंग के माध्यम से, तो देख रहे हैं कि अपने गांव में जितनी जनसंख्या पहले थी अब वो नहीं है। हुआ क्या है कि वो लोग पलायन कर गए हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, आखिर हम लोग कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने से कितनी समस्या होती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी ही करें, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी नौकरी करें या फिर अपना खुद का धंधा करें या रोजगार लगाएं कुछ भी। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय लगाइए और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाइए।
0: बिल्कुल वर्षा जी, आप एक बात हम इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि हम आप देखते हैं कि जब हम दूसरों की मजदूरी करने के लिए यानी यहाँ से हम पलायन करते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो शिक्षा पर, उनकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है कि बच्चों पर सबसे खासा असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मजदूरी का बेटा मजदूरी ही करेगा, यानी मजदूर करने वाला व्यक्ति का बेटा मजदूरी ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजदूर करने वाले का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मजदूर करने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सारे जो रहते हैं मजदूर करने वाले लोग आगे चलकर बड़ा अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अपने पढ़ाई का स्तर जो रहता है, हम और आप देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो अब हम बुंदेलखंड को देखें, तो बच्चे जो मजदूर करने के लिए चले जाते हैं साथ में, तो उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम हो जाता है, तो अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत सारी समस्या आती है।
1: जी हाँ साथियों, तो इसीलिए हमारी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो आजीविका कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पर हमें जरूर अपने सुझाव और फीडबैक दें।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है, लेकिन आप अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो या फिर आपने भी इससे कुछ सीख ली हो, अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव किया है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी सबको सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपके रेडियो साथी मनीष

0: हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में शुरुआत करने से पहले श्रोताओं आप सभी को बता देना चाहते हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आप

0: का रेडियो साथी मनीष।
1: जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं, लगन से रहते हैं और हिम्मत रखते हैं कि हम जरूर कुछ कर दिखाएंगे। क्योंकि कई बार जब हम कोई काम बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी निगेटिविटी भरी होती है लोगों के मन में कि वो हमें जहां पे उन्हें उत्साहवर्धन करना चाहिए वहां वो हमें निराश कर देते हैं। उनके शब्दों से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि शायद ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन वहीं अगर हमारा आत्मविश्वास हमारा साथ देता रहेगा तो जरूर हम वो काम सफल कर पाएंगे। ऐसी ही एक कहानी आज हम आप सबके बीच में सुनाने वाले हैं, एक सफल कहानी जो कि एक महिला की कहानी है जिनके पास न परिवार का सपोर्ट था न पति का साथ था, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से अपनी मेहनत से अपने ससुराल वालों का सहारा बनी और बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को उजागर करने के लिए आगे आई।
0: सही कहा बिल्कुल। और साथियों हम बताना चाहते हैं क्योंकि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, हम छोटी सी पूंजी लगा के किस तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं इस पर भी हम एक नजर डालते हैं। साथ साथ में हम जो हमारे रोजगार सूचनाएं रहती हैं उसको भी हम बताते हैं, साथ साथ में जो गवर्नमेंट्स के साथ स्कीम्स आती हैं उस पर भी हम जिक्र करते हैं। लेकिन खास तौर पर देखा जाता है कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम कहानी पर भी फोकस करते हैं और उन कहानियों को हम सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर हम भी एक व्यवसाय कर सकते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में घर वालों, परिवार की या समाज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन उस समय जब महिलाओं को खास तौर पर समाज की, घर वालों की सपोर्ट की जरूरत रहती है तब वहां पर कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हम और आप देखते हैं कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। खासतौर पर महिलाओं की अगर बात करें, बेटियों की अगर बात करें, तो बेटियों को जो समानता का दर्जा देने की बात चल रही है वो समानता का दर्जा देते भी हैं और खासतौर पर महिलाओं को सशक्त होने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। हम कभी कहीं भी ऐसा नहीं आंकते हैं कि महिलाएं हमसे कमजोर हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगी, वो बस घर के चूल्हे और रसोई तक सीमित रहेंगी, ऐसा नहीं है। आज की इस दुनिया में, भागम भाग बड़ी दुनिया में, आज हम महिलाओं की अगर बात करें, उनकी जीवनी की बात करें, उनकी व्यवसाय की बात करें, तो वास्तव में एक हमारी आंखें खुल जाती हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर हम हो जाते हैं कि वास्तव में महिलाएं इतना कुछ कर सकती हैं, इतना सहने के बाद इतना आगे बढ़ सकती हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक हम महिला की बातचीत बताने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम छोटा काम बड़ा मुनाफा में अंगूर की खेती उन्होंने किस तरीके की थी उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ में किस तरीके से हम अंगूर का व्यवसाय कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे।
1: तो मनीष भैया, आपको क्या लगता है कि पहले हमें कहानी सुननी चाहिए या फिर आप जो तरीके बता रहे हैं कि अंगूर की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए उन पर बात करनी चाहिए?
0: हमें लगता है कि हमें महिला, जो सफल महिला हमारी निकल के आई है, उनकी हम कहानी एक बार सुन लेते हैं, इसके बाद हम छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के बस की बात नहीं है खेती, लेकिन संगीता ने साल में 30 लाख रुपए कमाकर किया उनकी बात को गलत साबित। श्रोताओं, यहाँ पर संगीता जी बताती हैं कि उनसे कहा गया था कि एक अकेली महिला खेत नहीं संभाल सकती, इसलिए वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन वो बताती हैं कि ऐसी बातें कहने वालों को गलत साबित करना चाहती थी मैं। ये कहना है कि नासिक के मटोरी गांव में अंगूर की खेती करने वाली महिला किसान संगीता जी का जिंदगी ने कदम कदम पर संगीता का कड़ा इम्तिहान लिया। पहले उन्होंने अपने बच्चे को खोया और फिर पति की भी मौत हो गई। कुछ साल पहले ससुर भी नहीं रहे, लेकिन संगीता ने हार नहीं मानी। अपने दो बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने खेत की पगडंडियों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लोगों ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, पर उनका इरादा पक्का था। आज वह ट्रैक्टर चलाती हैं, मार्केट का भी काम संभालती हैं और अपने अंगूर की खेती से लाखों रुपए कमा रही हैं। संगीता बताती है कि साल 2004 में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को खो दिया था। अभी उस सदमे से उबरी ही नहीं थी कि 2007 में एक सड़क दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय वे 9 महीने की गर्भवती थी। सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो अकेली थी और जीने की इच्छा भी जैसे मानो खत्म सी हो गई थी। संगीता 10 साल तक तो अपने सास ससुर और रिश्तेदारों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी, लेकिन 2017 में पारिवारिक झगड़ों के चलते वह अपने सास ससुर के साथ अलग हो गईं। बदकिस्मती ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 2 महीने बाद ही उनके ससुर की भी बीमारी से मौत हो गई। 39 साल की संगीता उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं, जिन लोगों ने जीवन में हमेशा मेरा साथ दिया उनको मैंने खो दिया। अब मैं अकेली थी और जीने की इच्छा भी जैसे खत्म हो गई थी। इस पारिवारिक त्रासदी का मतलब यह भी था कि संगीता को अब अपने ससुर द्वारा छोड़े गए 13 एकड़ के खेत को भी अकेले ही संभालना था। उन्होंने कहा, खेती हमारी आमदनी का एकमात्र जरिया था। कुछ महीने पहले जिन रिश्तेदारों से हम अलग हुए थे उन्होंने यह दावा किया था कि वो अकेले खेत और घर नहीं संभाल पाएंगी। उनके अनुसार खेती करना महिलाओं का काम नहीं है, लेकिन संगीता ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। आज वह अपनी 13 एकड़ जमीन पर अंगूर और टमाटर की खेती करती हैं। टनों की उपज है और उससे लाखों की कमाई होती है। समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी कहानी बताते हुए संगीता कहती है, खेती करने के लिए अपने गहनों को गिरवी रखकर कर्ज लिया था, चचेरे भाइयों से पैसे भी उधार लिए थे। मेरे भाइयों ने खेती करने में उनकी बहुत मदद की। उन्होंने अंगूर की खेती के हर पहलू से रूबरू कराया, कौन से रसायन का कब इस्तेमाल करना है, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या तकनीकी अपनानी है और भी बहुत सी चीजें। विज्ञान की छात्रा होने की वजह से उन्हें काफी सारी चीजें सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंगूर की खेती करते हुए संगीता को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया, कभी पानी का पंप खराब हो जाता तो कभी बेमौसम बारिश से नुकसान, कभी फसल में लगे कीड़ों से निपटना पड़ता तो कभी मजदूरों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह आगे कहती है, महिलाएं खेती तो संभाल लेती हैं, लेकिन दूसरे ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते आए हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाना, मशीनों की मरम्मत करना, उपकरणों का इस्तेमाल और सामान खरीदने के लिए बाजार जाना। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, दोनों जिम्मेदारी अब मुझे ही संभालनी थी। मैंने 2-व्हीलर और ट्रैक्टर चलाना सीखा। कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब ट्रैक्टर ठीक कराने के लिए मुझे पूरा दिन वर्कशॉप में बिताना पड़ता था। खेती ने सिखाया लगन और धैर्य। धीरे धीरे ही सही लेकिन संगीता के खेत ने फल देने शुरू कर दिए थे। हर साल उनके खेत में 800 से 1000 टन अंगूर की उपज होती है, जिससे वह 25 से 30 लाख रुपए सालाना कमा लेती हैं। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई के लिए वह छोटे स्तर पर टमाटर की खेती भी करती हैं। आज संगीता की बेटी ग्रेजुएशन कर रही है और बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। संगीता ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंगूरों को नियार्त करने की योजना भी बनाई। उन्होंने बताया, इस बार बेमौसम बारिश और खराब मौसम ने मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक दिया, लेकिन अगले सीजन में ऐसा कर पाऊंगी, उनकी इसकी पूरी उम्मीद है। संगीता के अनुसार खेती ने उन्हें लगन और धैर्य रखना सिखाया। उन्हें गर्व है कि वह उन लोगों के सामने खुद को साबित कर पाई जिन्हें उनकी काबिलियत पर शक था। वह कहती है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, मुझे बहुत दूर तक जाना है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं सभी बाधाओं को पार करके सफलता हासिल कर पाई। यह मेरी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है। तो श्रोताओं, ये थी कहानी संगीता की, जो कि नासिक के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली है। अब हमारे सभी श्रोताओं के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो कहानी है वो बुंदेलखंड की नहीं है, फिर भी रेडियो बुंदेलखंड पर क्यों चलाई जा रही है। तो श्रोताओं, अब हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने बुंदेलखंड में ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि हर एक क्षेत्र में पहुंच अपनी बना चुका है। इसलिए जहां भी हमारे श्रोता इस जानकारी को, इस कहानी को सुन रहे हैं और आपके यहां अगर अंगूर की खेती हो सकती है तो आप इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अंगूर की खेती में ही अपना लक्ष्य बना सकते हैं या अपनी सफलता पा सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो हो सकता है आप उसमें भी अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बस जरूरत है तो हिम्मत रखने की और बहुत सारी मेहनत करने की।
0: सही कहा। और साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि अंगूर की खेती चूंकि नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है, लेकिन हम अगर व्यावसायिक तौर पर इसको देखा जाए तो नासिक की खेती और अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए कि अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में हम अंगूर की खेती करें तो इस पर भी कार्य हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी ठंडे देशों में स्ट्रॉबेरी की खेती होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जलवायु को देखते हुए हम कहीं भी इस तरीके की खेती नहीं कर सकते हैं। अगर उदाहरण आपके सामने है, अगर देखा जाए जमुनिया गांव में जहां पर थाई एप्पल वेल जो थाईलैंड में सिर्फ इसकी खेती की जाती है, उसके बेर यहाँ पर जब पैदा हो सकते हैं उसको उगाया जा सकता है, कश्मीरी एप्पल बेर। और खासतौर पर एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल यानी कि सेब जो हम सिर्फ कश्मीर में अधिकतर देखा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा पैदावार होती है, लेकिन यहाँ के किसान, हमारे जमुनिया के किसान ने उसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर इसको देखा कि क्यों ना इस जलवायु में हम एप्पल की खेती करें, लेकिन वो सफल हुए और आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं की खेती कहीं नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें समझने, सोचने और उस तकनीकी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आपको समझना होगा, सोचना होगा। स्ट्रॉबेरी की दोस्तों बात करें तो स्ट्रॉबेरी यहाँ पर अपने पास में हसारी है, वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और उसको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी उनको किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो खेती के बारे में बताते हैं या फिर जिस व्यवसाय के बारे में हम बताते हैं तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में वो संभव नहीं है। संभव हर चीज है, लेकिन आपको कहा गया है कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य के साथ साथ आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि हम इस पर जरूर जरूर खड़े उतरेंगे। हम साथियों कुछ देर बाद आपको, चूंकि हम जब गीत संगीत इस कार्यक्रम में एक सुनते हैं, इसके बाद हम किस तरीके से खेती होती है, कहां पर खेती होती है अंगूर की, इसके बारे में भी हम छोटी चर्चा करेंगे और इस पर भी एक नजर हम जरूर डालेंगे। तो आइए इसी बीच हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं आप सभी अभी गीत सुन रहे थे, गीत का आनंद ले रहे थे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम यहां पर अंगूर की खेती के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं कि भारत में अंगूर की खेती कहां कहां होती है और किस प्रकार से हम अंगूर की खेती कर सकते हैं।
1: सही कहा, क्योंकि अंगूर की खेती

और आप आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बागवानी उद्यम के रूप से अंगूर की खेती काफी उन्नति पर है। आज महाराष्ट्र सबसे अधिक क्षेत्र में अंगूर की खेती की जाती है तथा उत्पादन की दृष्टि से यह देश की अग्रणी है। भारत में अंगूर की उत्पादकता पूरे विश्व में सर्वोच्च है। उचित कटाई छटाई की तकनीक का प्रयोग करते हुए मूल व्रंतों के उपयोग से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंगूर की खेती की व्यापक संभावनाएं उजागर की गई हैं। अब आपको पता होगा कि कहां कहां कौन कौन सी किस्में रहती हैं अंगूर की, ये बात जानना बहुत जरूरी है। भारत में लगाई जाने वाली कुछ किस्में हैं जो आपको बता देना चाहते हैं। अनब ए शाही, यह किस्म आंध्र प्रदेश पंजाब हरियाणा और कर्नाटक राज्यों में उगाई जाती है। यह व्यापक रूप से विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के अनुकूल है। यह किस्म देर से परिपक्व होने वाली और भारी पैदावार होने वाली खेती है। बेरियां जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं तो ये लंबी और मध्यम लंबी और बीज वाली और एम्बर रंग की हो जाती हैं। इसका जूस साफ और 14-16% TSS सहित मीठा होता है। यह केवल कोमल फफूंदी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। औसत उपज इसकी 35 टन है। फल बहुत अच्छी क्वालिटी वाला रहता है और तालिका उद्देश्य हेतु ज्यादातर इस्तेमाल इसे किया जाता है। दूसरा आता है बैंगलोर ब्लू, यह किस्म है। यह किस्म सिर्फ कर्नाटक में उगाई जाती है। बेरियां पतली त्वचा वाली छोटी आकार की गहरे बैंगनी अंडाकार और बीजदार वाली होती है। इनका रंग बैंगनी रंग का होता है, साफ और आनंदमय सुगंधित 16-18 TSS वाला होता है। फल अच्छी क्वालिटी का होता है और इसका उपयोग मुख्यतः जूस और शराब बनाने के लिए किया जाता है। भोकरी किस्म रहती है, किस्म सिर्फ तमिलनाडु में उगाई जाती है। गुलाबी रहती है, ये भी तमिलनाडु में उगाई जाती है। काली शराबी के नाम से आपको ज्यादातर आपने देखा होगा। यह किस्म छोटे पैमाने पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। इसकी बेरियां लंबी अंडाकार और बेलनाकार लाल बैंगनी और बीजदार होती हैं। इसमें TSS 22% होता है। यह किस्म जंग और कोमल फफूंदी के प्रति अति संवेदनशील होता है। परलेटी, यह किस्म पंजाब हरियाणा और दिल्ली के राज्यों में उगाई जाती है। इसकी बेरियां बीज रहित छोटे आकार वाली थोड़ा एल्पोसोडियल गोलाकार और पीले रंग की होती हैं। इसमें भी 16-18 TSS सहित साफ और हरा रंग होता है। शरद सीडलेस, यह रूस में स्थानीय किस्म है। इसे किसमिस क्रॉनी कहा जाता है। इसकी बेरियां बीज रहित काली और कुरकुरी और बहुत मीठी होती हैं। उपयोग आपको पता होगा, अंगूर एक स्वादिष्ट फल है। भारत में अंगूर अधिकतर ताजा ही खाया जाता है। वैसे अंगूर की कई उपयोग हैं। इससे किसमिस रस और मदरा भी इसमें बनाई जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसके लिए जलवायु किस तरीके से होनी चाहिए, ये भी आप जान लीजिए। अंगूर की जड़ की संरचना काफी मजबूत होती है, अतः यह कंकरीली रेतीली से चिकनी और उथली से गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है। लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो अंगूर की खेती के लिए उचित पाई जाती है। अधिक चिकनी मिट्टी में इसकी खेती ना करें और बेहतर रहेगा। अंगूर लवणता के प्रति कुछ हद तक सही रहता है और जलवायु का फल के विकास और पके हुए अंगूर की बनावट और गुणों पर काफी असर इसका पड़ता है। इसकी खेती में के लिए गर्म शुष्क और दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है। अंगूर के पकते समय वर्षा और बादल का होना बहुत ही हानिकारक होता है। इससे दाने फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। बेलों की रोपाई, बेलों की छटाई किस तरीके से करनी चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी रहता है। बेलों की छटाई के लिए अंगूर की बेल साधने हेतु पंडाल बाबर टेलीफोन निफिन और हेड आदि पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसको पंडाल पद्धति से अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। पंडाल पद्धति द्वारा बेलों के साधने हेतु 2.1 से 2.5 मीटर ऊंचाई तक कंक्रीट के खम्भों के सहारे इनको तारों के जाल पर बेलों को फैलाया जाता है। जाल तक पहुंचने के लिए केवल एक

0: ही तना बना दिया जाता है तारों की जाल तक पहुंचने की पर ताने को काट दिया जाता है ताकि पार्श्व शाखाएं आए उगी हुई प्राथमिक शाखाओं पर सभी दशाओं में 60 सेंटीमीटर दूसरी पार्श्व शाखाओं के रूप में विकसित की जाती हैं। खाद के लिए खाद क्या उर्वरक के कौन सा देना चाहिए इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अंगूर की बेल भूमि में काफी मात्रा पोषक तत्व का ग्रहण करती है अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए आवश्यक है खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। पंडाल पद्धति की सीधी 3x3 मीटर की दूरी पर लगाई गई अंगूर की 5 वर्ष की बेल में लगभग 500 ग्राम नाइट्रोजन 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 700 ग्राम पोटेशियम सल्फेट और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो इस तरीके से हम अपने अंगूर की फसल को लगा सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं और खासतौर पर देखा जाए तो हम एक छोटा सा व्यवसाय भी इसको कर सकते हैं कि हम नासिक से अंगूर की पेटी खरीद कर यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में बेचा है तो ये भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। इस पर भी हम अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल मलिस भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहां वहां से इकट्ठी कर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई ताकि बहुत कम शब्दों में अगर कहा जाए तो कैसे हमारे श्रोता साथी एक बेहतरीन व्यवसाय कर सकते हैं अंगूरों का अगर वो करना चाहे तो। जो आखिरी में आपने कहा कि अगर आप पेड़ों को नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है अगर तो आप नासिक से डायरेक्ट जाके वहां से पेटी की पेटी खरीद कर और यहाँ अपने बुंदेलखंड में आके उनको बेच सकते हैं ये भी एक तरह का व्यवसाय ही है।
0: सही का वर्षा और साथियों अब हमारा वक्त भी हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का लेकिन एक छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं इसके लिए आपको एक प्लान की जरूरत पड़ती है कि हम किस तरीके से प्लान बनाया जाए उसकी ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। केबीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा झांसी में बना हुआ है वहां पर जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं वहां पर भी हमें सलाह लेनी चाहिए किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं किस तरीके से हम व्यवसाय कर सकते हैं ये सलाह होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है तब जाकर हम एक अच्छे व्यवसाय बन सकते हैं और अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं छोटी सी पूंजी लगाकर।
1: बिल्कुल और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि श्रोताओं अगर आपने भी इस प्रकार की कोई खेती करी है और उस खेती को व्यावसायिक तरीके से अगर आपने किया है तो हमें जरूर बताइएगा ताकि आपकी कहानी भी हम इसी प्रकार से जैसे संगीता जी की कहानी हमने लोगों को सुनाई ऐसी आपकी कहानी भी हम और लोगों तक पहुंचा सके जिसके लिए आप हमें नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है
0: 9425147726।
1: श्रोताओं आप सभी को फिर से बता देना चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड आप सिर्फ रेडियो पर नहीं आप ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं जिसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है और आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाकर रेडियो बुंदेलखंड जब लिखेंगे तो ग्रीन कलर का यानी हरे कलर का आपको लोगो दिखाई देगा और उसमें हिंदी में रेडियो बुंदेलखंड लिखा होगा तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें और भारत के किसी भी कोने में यानी दुनिया के किसी भी कोने में आप रहकर रेडियो बुंदेलखंड को सुन सकते हैं अपना और आनंद ले सकते हैं जानकारी पा सकते हैं साथ में अपनी बात को भी कह सकते हैं।
0: अब यहीं पर विराम लेते हैं क्योंकि अब और वक्त हो चुका है हमारे अगले कार्यक्रम का भी हो रहा है तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में तब तक के लिए नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है। और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, को बोल रही?
2: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
1: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हूँ।
2: दीदी का हमें एक सुना दो एक गीत।
1: हाँ, कौन सा सुना दे?
2: बिल्कुल, मैं खेल जाती हूँ सुंदरी नगर जावे भाई दीवानी में बारी हमारी जावे
1: संध्या सरगम को है वो।
2: हाँ
1: बिल्कुल, यानी नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
2: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
1: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
2: दीदी, सुना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ है।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में का हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना दी।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: बोल रही
0: उमा देवी बोल रहा है मस्ता पर से।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोग किसने आपको
0: हमें तू माशाल्लाह तुम जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांगेत और आनो। हाँ वही लोग गीत सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए लोग गीत। ठीक है
0: ठीक है नमस्कार।

सखियों, अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को। और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिड़िया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिड़िया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे, उनके आहार पे अपन बातचीत

दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य, अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

0: लाओ मोए कंगना जैसे पेरे देवरानी। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है।
1: जी हाँ,
0: पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने।
1: जी हाँ,
0: अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें।
1: जी हाँ,
0: अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशु पालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशु पालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जहां अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहर।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिन को मेला री उड़ जाए हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातदिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। दोस्तों हमले किया गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज अपन मिले भैया ज्ञान सिंह यादव जी से और उनसे जाने विधा फाक के बारे में। सो ज्ञान सिंह भैया, आज के कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अच्छा ज्ञान सिंह भैया जी, आपसे हम जो जान पूछा है कि आपको संगीत में लगन कब से लगी?
1: संगीत में लगन तो बहुत समय से लगी।
0: अच्छा, आप क्या साल के थे जब आपको याद हो?
1: समय का तो ये स्थिति है कि हमारी अधिकांश ये स्थिति बनी कि हमारे बुजुर्गन के बीच में बैठक रही है।
0: अच्छा,
1: तो उसी में जैसे कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भय, कहीं फाग सम्मेलन, कहीं भजन सम्मेलन, कहीं गोट सम्मेलन, कहीं कवि गोष्ठी हुई, तो उसमें सुनत सुनत में हमें भी ऐसी लगी कि इस कार्यक्रम से थोड़ा जुड़ा रहे, इसलिए फिर जो है थोड़ा बहुत मतलब उसमें रुचि
0: रखी आपने। अच्छा, आपने रुचि रखी तो आपको जो पता है कि आप जब के साल के थे जब आप?
1: वैसे तो हमारी सबसे ज्यादा पिताजी मतलब जैसे मुखिया रहे, जमींदार रहे।
0: अच्छा,
1: तो सबसे पहले बात हमेशा होती पिताजी से, बाद में होती।
0: अच्छा।
1: कभी खेत और खलिहान पे चले गए और जो भी आओ उनने पूछी क्यों भैया पिताजी हैं, कहाँ गए पिताजी, कहाँ गए मुखिया जी, तो सबसे पहले हमारी बात होती। तो हर आदमी से हमारी मतलब एक जुड़ाव सुराव।
0: तो आपको लगन लगी। अच्छा, आपने सबसे पहला कौन सी चीज गाई आपको जो है ध्यान?
1: और ऐसी तो ये स्थिति है कि जैसे मतलब हमारे पिताजी पहले रामायण पढ़ते।
0: अच्छा।
1: तो पूरे गांव के लोग, गांव में मतलब ये स्थिति मुखिया भी रहते और रामायण रख के थे।
0: अच्छा।
1: तो सबसे पहले पिताजी जो है रामायण में रुचि रखते थे। तो हमें सुनने में आई।
0: हाँ।
1: फिर धीरे धीरे पढ़ाई चालू हुई तो हम फिर रामायण से शुरू हो गए।
0: अच्छा, रामायण से आपने शुरू करी तो आपको कोनो चौपाई ऐसी याद है? आज के साल हो गई आपको, कितनी उम्र है आपकी?
1: आप तो 62 साल की उम्र
0: हो गई। तो अब जब आपने रामायण पढ़ी हो गए तो अब आज अपन कोनो चौपाई बता पाए हुए?
1: बिल्कुल बता।
0: कौन सी चौपाई आपको अभी तक याद रही?
1: आज जैसे भगवान बल्लभ जी रहे
0: जी
1: और भगवान राम और कृष्ण रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिख दी कि जिसके कारण मतलब बोलने से भी मतलब कुछ काम हो जाते हैं। तो जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरत अस होई। इस चौपाई से बोलने से आदमी भूखा नहीं सोएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ,

0: भाई।
1: जी तो जैसो भाई आपको अभी तक याद है?
0: बिल्कुल।
1: अच्छा जा तो भाई आपके घर की बात करें, आपके पिताजी रामायण पढ़ते सो आपको तैसे लगन लगी सो आपने रामायण में जा चौपाई अभी तक याद रखी।
0: चौपाई तो और भी
1: रखे, और भी रहे आपनो, लेकिन आप ई के अलावा रामायण के अलावा आपने कोनो जैसे के कीर्तन होए, कोनो भजन होए, कोनो भाग होए, तो आपको और का याद है?
0: तो जैसे एक पुरानी भाग है,
1: अच्छा
0: राजा मनु रानी शत्रुपा दी,
1: अच्छा
0: तो उनके नाम से किसी कवि ने एक भाग तैयार कर दी।
1: अच्छा
0: वो भाग जब हमने सुनी तो हमें भी लगी कि बहुत पुरानी भाग है जय।
1: हाँ
0: तो एक भाग भी हमने मतलब
1: अच्छा सुनी
0: सुनी।
1: हाँ तो कौन प्रकार से अच्छा गा?

से भाके कथा पुरानी सुनो गुनी जन ज्ञानी। देखो बदपुरी सुख दाम राजा मनसत रूपा बाम कन्या देव बतिये नाम जननी जिनी के ब्याई कदम इसके आए जिनके भय कपल मुन जाय वेद पुराणन में जिसका छाए उनके।

0: पत भय मन में तपके कारण तजिया और बस गई है भीत हजार सुरपति आए बारम्बार कबे बार मांगो के रह गए केवल तन में हार हर ने दर सिंहासन छा नफ्स मतलब तू की बार जीने तन त्यागी कृपा सिद्ध श्री के अमृत रूपी बानी दर्शन देवे भक्त कांस पिकते अंतर ध्यानी।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।